बीटिंग वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति

0: कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, रबी की फसलों की कटाई के बाद गर्मी की ऋतु में ज्यादातर खेत खाली हो जाते हैं। इन खेतों में गर्म हवा बहने से नमी समाप्त हो जाती है। खेत खाली पड़े रहने से अनावश्यक खरपतवार उगाते हैं जो कि कीड़ों मकोड़ों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। ये कीड़े आसपास की फसलों में रोग व्याध की वृद्धि भी करते हैं जिससे फसल की उपज एवं गुणवत्ता दोनों में कमी आती है। गर्मी की जुताई कर देने से ये खरपतवार तथा ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं। चूँकि खरीफ की फसल बरसात वाली फसल होती है जिसके कारण बारिश होते ही या खेत में नमी होने पर बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो कि खरीफ की फसल को सीधे प्रभावित करते हैं। इन खरपतवारों से एक तो खरीफ की फसल की उपज कम हो जाती है तथा दूसरे इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रह पाती। आजकल श्रमिकों की वैसे भी समस्या रहती है जिससे खरपतवार नियंत्रण श्रमिकों के द्वारा समय से एवं कारगर ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। अगर रासायनिक दवाओं से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो यह बहुत ही महंगा पड़ता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि गर्मी के मौसम में जब खेत खाली हो तो गहरी जुताई करके इन अधिकांश खरपतवारों से छुट्टी ले ली जाए। गर्मी की जुताई करते समय कुछ खास खास बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि रबी की फसलों की कटाई के तत्काल बाद गर्मी की जुताई कर दें ताकि इस समय की नमी का लाभ उठाया जा सके। यदि जुताई करने में देर होती है तो मिट्टी कड़ी हो जाती है, ऐसी दशा में खेत की जुताई करना कठिन हो जाता है। हाँ, फिर यदि बारिश होती है या खेत में हल्का पानी लगा करके फिर जब जुताई लायक हो जाए तो जुताई करनी चाहिए। दूसरी भी बात ध्यान देने की यह है कि जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा ये जुताई कम से कम 6 इंच गहरी हो, यानी कि खूब गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती और खेत को खुला ही छोड़ देते हैं। गर्मी की जुताई से कई लाभ हैं। एक तो गर्मी की जुताई से रबी के पौधों की जड़ तथा खरपतवार उखड़ जाते हैं तथा बरसात में वर्षा होने पर शीघ्र ही सड़क

0: कर खाद में बदल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। खरीफ ऋतु में वर्षा होने पर खरपतवार कम उगते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण करने में मुश्किलें कम आती हैं। गर्मी की जुताई से कीड़ों मकोड़ों का नियंत्रण भी होता है। प्रायः कीड़े सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। गर्मी की जुताई से ये ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं, जो या तो तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं या चिड़िया आदि उन्हें खा जाती हैं। गर्मी की जुताई से अनेक रोगों को फैलाने वाले बीजाणु, जो कि खरपतवारों पर जीवित रहते हैं, खरपतवारों के साथ ये भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जुताई से तेज धूप में तपी मिट्टी तथा गहराई तक जुताई के कारण प्रथम वर्षा के पानी की काफ़ी मात्रा मिट्टी सोख लेती है तथा गहराई तक नमी सुरक्षित रहती है। मिट्टी में वायु संचार होता है तथा साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जन जन के हृदय में निवास करते हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा वर्षा करते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को शत शत नमन है।

ईश्वर की शरणागति मानव मात्र का एकमात्र आलंब है, एकमेव सहारा है। प्रभु भक्तों के दिलों में वास करते हैं और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में आज आपने हरिओम शरण, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और सुमन देवगन के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक है गौ सेवा। आलेख एवं स्वर अरुण पांडे का है।
1: गावो विश्वस्य मातरः, गाय समस्त सचराचर जगत की माता है। गोमाता अखिल विश्व का आधार है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। अतः गाय की पूजा और सेवा से संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना होना माना गया है। गाय की महिमा गाई नहीं जा सकती। वेदों से लेकर पुराणों तक में उनकी महिमा का बखान किया गया है। गाय के समान निष्पाप जीव इस धरती पर कोई नहीं है। इसी कारण पवित्र गौ माता की हर चीज पावन और दिव्य मानी जाती है। पंचगव्य के अनेक लाभ बताए गए हैं और इनमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रमुख हैं। सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ, ऐसी महत्ता वेदों में कही गई है। वेदों में बताया गया है कि प्रजापति गाय के सिंह, इंद्र सिर, अग्नि ललाट और यम गले की संधि है। नक्षत्रों का राजा चंद्रमा मस्तिष्क, दीवलोक ऊपर का जबड़ा और पृथ्वी नीचे का जबड़ा है। वायु देवता इसके समस्त अंग हैं। इसका लोक स्वर्ग है और पृष्ठ वंश की हड्डी रुद्र है। वाघ इसकी छाती, अंतरिक्ष इसका बल, देवांगनाएं इसकी पीठ और उनकी परिचारिकाएं इसकी हड्डियां हैं। मित्र और वरुण कंधे हैं, त्वष्टा और अरेमा हाथ हैं और महादेव इसकी भुजाएं हैं। वायु देवता इसकी पूंछ और पवमान इसके रोए हैं। गाय का ये दिव्य स्वरूप वास्तव में उसकी महिमा और महत्ता का मंडन करता है। महाभारत के अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व में महर्षि च्यवन ने राजा नहुष से कहा, मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं देखता। गौ सेवा समस्त पापों का नाश करती है और वो विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दूहने पर अमृत ही देती है। वे अमृत की आधारभूता हैं। गौवें जहां होती हैं वहां के पापों का नाश कर देती हैं और उस स्थान को पवित्र बना देती हैं। गौवें समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इसी पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि जिनके गोबर से लीपने पर देवस्थल, पितरों के श्राद्ध पवित्र होते हैं, उनसे बढ़कर पावन क्या हो सकता है। भविष्य पुराण में उत्तर पर्व के अध्याय 69 में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, समुद्र मंथन के समय सागर से 5 गायें सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला उत्पन्न हुई थीं। ये सभी गौवें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु कही गई हैं। गौवों से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर और रोचना अत्यंत पवित्र हैं और प्राणियों के सभी

0: पापों को नष्ट कर उन्हें शुद्ध करने वाले हैं। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गौओं के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गाय की महिमा अद्भुत है। इसके षडंग अत्यंत लाभकारी हैं, अतः हमें गौ सेवा करनी चाहिए और इसकी चीजों का सेवन करना चाहिए। गौ सेवा अश्वमेध के समान पुण्य प्रदान करती है। गौ सेवा पृथ्वी की सरिता सरोवर के स्नान से भी बढ़कर पुण्य देने वाली है। गाय शरीर से स्वास्थ्य संवर्धन के साथ पापों का नाश करने में भी सहायक होती है। अतः भक्तिभाव पूर्वक गौवों की यथा योग्य विधिवत सेवा करनी चाहिए।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था गौ सेवा। आलेख एवं स्वर अरुण पांडे का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पांडे। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और आज हम लोग ऋतु के अनुसार आहार विहार पर चर्चा करेंगे। आहार और विहार सामान्यतः सभी मनुष्य के स्वास्थ्य और रोगों के लिए जिम्मेदार हैं। पहले हम लोग मानते थे कि जो लाइफ स्टाइल इंड्यूस डिजीज हैं, जीवनचर्या से संबंधित बीमारियां हैं, वह काफ़ी कम हैं। लेकिन धीरे धीरे नए शोध से पता चला कि जीवनचर्या हमारे स्वास्थ्य और हमारे रोगों के उत्पन्न होने में बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारी जीवनचर्या सही है तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारी जीवनचर्या खराब है तो हम दवा करते हुए भी पुनः अस्वस्थ हो जाएंगे। प्रत्येक ऋतु में, क्योंकि भारत में अलग अलग समय पर यहाँ के ऋतु में परिवर्तन होता है, उसके तापमान में, उसकी आर्द्रता में, उसके दिन मान में, ऐसी कंडीशंस हैं जिसको हम लोग जलवायु या मौसम कहते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। भारत में प्राचीन काल से ही तीन मुख्य और तीन संबंधित ऋतुएं यानी छह ऋतुएं बताई गई हैं, वर्षा शरद हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म। इसमें तीन आदान काल की ऋतुएं हैं जिसमें सूर्य प्रबल होता है, शरीर से रस, पौधों से रस, भूमि से जल इनका कर्षण करता है, और तीन ऋतुएं ऐसी होती हैं जिसमें ये प्राप्त होती हैं, जिसमें चंद्र प्रधान होता है, शरीर पर जल की, रस की, शरीर में रस की, बल की वृद्धि होती है। तो इस तरह से वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, क्योंकि इस समय ज्येष्ठ और अषाढ़ दो महीने ग्रीष्म के माने जाते हैं, ज्येष्ठ महीना चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य प्रबल होता है, उसकी रश्मियां तेज होती हैं, पृथ्वी से शरीर से जलीयांश का शोषण होता है और धातुएं कम पुष्ट होती हैं, अग्निमंद होती है। इसी तरह से हमारा जो आहार है, अगर आहार के बारे में हम एक कंसेप्ट बनाएं, एक अभिधारणा बनाएं, तो सामान्य कंसेप्ट है कि आहार्यते गलाद अधनियते इति आहार है। जिस किसी को भी हम आहरण करते हैं, इंजेस्ट करते हैं या गले से हम नीचे उसको लेते हैं, वह आहार है। लेकिन अगर हम कहें कि हम संखिया गले से नीचे ले रहे हैं तो क्या वो आहार है? हम कुचला गले से नीचे ले रहे हैं तो क्या आहार है? अतः परिभाषा दूषित है। तो आहार की जो मुख्य परिभाषा है, जो ऐसे सारे फैक्टर्स जिनके शरीर के संपर्क में आने के बाद शरीर और मन की तुष्टि और पुष्टि हो। तुष्टि से तात्पर्य ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी व्यक्ति को कहें कि आपको हम रसगुल्ला खिला रहे हैं, और किसी व्यक्ति को कहें कि आप छेना अलग खा लीजिए, फिर पानी पी लीजिए, फिर चीनी खा लीजिए, तो जितने न्यूट्रिएंट्स थे, जितने कंटेंट्स थे, वो तो मैंने दिया उसको, लेकिन उसकी तुष्टि नहीं होती है। हम अपने न्यूट्रिशन कंटेंट्स को किसी व्यक्ति में उसके मन के प्रसादन के बिना, उसको अच्छा लगे बिना अगर दे देते हैं, तो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स तो हम पूरा कर सकते हैं,

0: लेकिन उसकी तुष्टि नहीं होती। तो हमारे यहाँ आहार की दो अभिधारणा है जिसमें हम ऐसी चीज़ों को इंजेस्ट करें, ऐसी चीज़ों को अपने शरीर के पास ले आएं, उनको प्रयोग करें जिनके लेने से हमारे शरीर की भी तुष्टि पुष्टि हो, हमारे मन की भी तुष्टि पुष्टि हो। इसलिए जितना भी कुछ इनटेक लेते हैं जिससे शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है, आहार कहा जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में आहार की क्या अभिधारणा है? सबसे अच्छी अभिधारणा हमारी यह है कि जिस ऋतु में जो चीजें प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं वो वहां का आहार है। देशे काले च, जिस देश में जिस काल में जो चीजें पैदा होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, हमारे यहाँ कुछ आहार विहार की चीजें पैदा हो रही हैं, ककड़ी पैदा हो रही है, तरबूज पैदा हो रहा है, खीरा खरबूज पैदा हो रहा है, अन्य जगह पर नहीं पैदा हो रहे हैं, तो उस देश के लिए उस काल में जो चीजें पैदा होती हैं वो वहां के लिए नेचुरली साथ में होती हैं, नेचुरली सुटेबल होती हैं। और दूसरी चीज होती है कि हमारी अपनी प्रकृति के अनुकूल क्या है। सात्म सर्व प्रकारिण है, सभी प्रकार से सात्म हो। यह सात्म का बड़ा लंबा डिवीजन है, यानी हम अपने आहार विहार में चीजें तो ले लेते हैं लेकिन उस ऋतु के अनुसार जिन चीजों को हम चुनते हैं, जो वहां पैदा होती हैं, उन चीजों में से हमको उन्हीं को लेना है जो हमारे अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने रोग व्याधि के अनुसार, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, अपनी पाचन क्षमता के अनुसार उपयुक्त हो, उन्हीं चीजों को उस ऋतु में लेना है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने इस मौसम में आहार विहार विषय पर डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे की ये वार्ता सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थीं अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे आज रात 9:30 बजे। कहकशा सुनिए दिन 12 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे फनकार होंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन 12:30 बजे सुनिए अलका याज्ञिक और शब्बीर कुमार को। हिंदी वार्ता के कार्यक्रम में आज शाम 7:31 पर शशिकला सिंह की वार्ता होगी। विषय होगा हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे अमरूद एवं आंवला की पौध प्रवर्धन तकनीक विषय पर डॉक्टर ज्योति कुमार सिंह से बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे गीतांजलि मौर्य का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे आज की बात यूथ जंक्शन यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। नन्हे दुनिया कार्यक्रम में शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने सुनेंगे रोचक जानकारी और गीत संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:45 पर और 7:31 पर आप सुनेंगे डॉक्टर

अंजलि शर्मा का सितार वादन। हेलो फोन इन फरमाइश सुनिएगा दिन 11 बजे, प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। अंगनैया कार्यक्रम में दिन 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी वट सावित्री और पर्यावरण विषय पर चर्चा। बहनें सुनेंगी पर्यावरण संरक्षण और हमारा स्वास्थ्य विषय पर श्रुति शाश्वत से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। साथ ही बहनें सुनेंगी गीत संगीत। झंकार आप सुनेंगे दिन 10 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर। गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनते हैं सुबह 7 बजे। गीतांजलि आप सुनेंगे दिन 2:30 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे। रसरंग कार्यक्रम सुनिए शाम 7:45 पर और रस माधुरी का समय होगा रात 8:15 का। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 10 बजे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। बीटीएम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: सूरज की तपिश में भी वो सुकून ढूंढो जो ठंडे पानी के छींटों और आम के पन्नों में होता है। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। खिड़की से आती वो सुनहरी धूप और कूलर की सौंधी खुशबू, स्वागत है आप सबका साल के उस मौसम में जहां सुबह की चाय से ज्यादा ठंडे पानी का घूट सुकून देता है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाओ जो सब बुलाते हैं।
1: हाँ जी पूजा, और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस, आज का पारा भले ही हाई हो पर हम अपना मिजाज एकदम कूल रखेंगे, तो तैयार हो जाइए एक रिफ्रेशिंग शुरुआत के लिए। बनारस, उम्मीद है आपकी सुबह उतनी ही चमक रही होगी जितनी की आपकी वो पुरानी फोटो जिसमें आप बिना वजह हंस रहे थे। पता है, हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कोई डेस्टिनेशन है, जैसे कोई स्टेशन जहां ट्रेन रुकेगी और हम खुश हो जाएंगे, पर सच तो ये है कि खुशी एक चॉइस है। आज हम खुद से एक प्रॉमिस करेंगे दोस्तों कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमारी खुशी में कमी नहीं होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम पॉजिटिविटी की उड़ान भरने वाले हैं। और हाँ, एक बात बताऊं, हम बड़े धमाकों के इंतजार में छोटी छोटी जो फुलझड़ियां हैं उन्हें तो भूल ही जाते हैं। हम वेट करते हैं कि जब प्रमोशन होगा, जब नई गाड़ी आएगी तब खुश होंगे, पर दोस्तों वो अदरक वाली चाय का पहला घूट या वो पुराने दोस्त का अचानक आया मिस यू वाला मैसेज, खुशी इन छोटे लम्हों में भी तो छुपी होती है। अगर आप आज के सूरज को देखकर मुस्कुरा सकते हैं तो यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। लाइफ में परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आज है वही सच है। और एक पुरानी कहावत भी है, खुशी बांटने से बढ़ती है। कभी आजमा कर देखिए, किसी अनजान को देखकर बस मुस्कुरा दीजिए या किसी परेशान दोस्त को बस

ये कह दीजिए कि मैं हूँ ना। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर अपने आप आ जाता है। खुद के लिए जीना तो मजबूरी है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असल में खुशी की चाबी है। तो आज किसी एक इंसान का दिन बनाइए, फिर देखिए आपकी खुशी में कैसे चार चांद लगते हैं। अब आप कहेंगे पूजा बातें करना आसान है, पर जब लाइफ प्रॉब्लम देती है तब क्या करें? तो देखिए दोस्तों, मुश्किलें तो बिन बुलाए मेहमान की तरह हैं, आएंगी ही, पर उन्हें चाय पिलाकर विदा करना है या घर की चाबी दे देनी है, ये आपके हाथ में है। याद रखिए, अपनी खुशी को किसी इंसान या परिस्थिति का गुलाम मत बनाइए। आप खुद में एक पूरा समंदर है, लहरों से मत डरिए। तो बस आज का मंत्र यही है, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी न किसी की हिम्मत जरूर होगी। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, फिर देखिए आपकी खुशी में कभी कमी नहीं होगी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। आज है दिन शनिवार का और तारीख है 16 मई। तो चलिए जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। बनारस अग्निवीर योजना के रास्ते फौजी बनने का सपना सजाए हैं तो तैयारी तेज कर लीजिए। भारतीय सेना ने परीक्षा कराने के लिए 1 जून से 12 जून की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा के लिए वाराणसी में 9 तो गोरखपुर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12 दिनों की परीक्षा में 6 और 7 जून को अवकाश रहेगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के साथ भी सेना भर्ती कार्यालय की वाराणसी यूनिट ने भी तैयारी तेज कर दी है। 12 जिलों के 1,07,155 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अग्निवीर बनने के लिए 1,00,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। इस कारण सेना भर्ती कार्यालय ने 4 पालियों में परीक्षा कराने की रणनीति बनाई है। बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पाठ्यक्रमों सत्र 2026-27 में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अभ्यर्थी 30 मई तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडे ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के निर्देशानुसार छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे इस अवधि का लाभ उठाते हुए अपना फॉर्म पूर्ण कर लें। आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बनारस अधिमास में कैलाश मठ बिरदोपुर से 17 मई से पंचक्रोशी यात्रा निकलेगी। मठ के महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी महाराज ने बताया कि यात्रा का विधिवत शुभारंभ दोपहर 2 बजे होगा। इसकी शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ

0: मंदिर में दर्शन पूजन से होगी। मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्प करणी पर यात्रा का संकल्प लेंगे। वहां से श्रद्धालु क्रूज से तुलसी घाट पहुंचेंगे, जहां से पदयात्रा और वाहन यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का प्रथम पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव मंदिर होगा। 18 मई को सुबह 5 बजे स्नान ध्यान एवं संकीर्तन के साथ यात्रा दूसरे पड़ाव भीमचंडी पहुंचेगी। अगले दिन यात्रा लंगोटी हनुमान मंदिर में दर्शन कर तीसरे पड़ाव रामेश्वरम, 19 को चौथे पड़ाव शिवपुर स्थित पांचों पांडवा पहुंचेगी। यहां विद्वानों एवं संतों का सम्मान होगा। इसके बाद यात्रा अंतिम पड़ाव पर यानी कपिलधारा पहुंचेगी। अंतिम दिन 20 मई को दर्शन पूजन के बाद यात्रा मणिकर्णिका घाट पहुंचेगी। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत के आह्वान पर नगर निगम ने तय किया है कि हर शनिवार को नो फ्यूल डे मनाया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में अब ईवी ही खरीदे जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सके। नगर निगम की ओर से शहर की सफाई, पानी, लाइटिंग समेत कई जरूरी कार्य वाहनों के माध्यम से किए जाते हैं। ऐसे कार्यों के लिए भविष्य में निगम ईवी ही खरीदेगा। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में। ১৯৪৮ में आज ही के दिन हिंदी की आधुनिक कविता के सम्माननीय और शीर्ष रचनाकारों में से एक मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। 1945 में उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद गोपाल चंद्र प्रहराज का आज ही के दिन निधन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। तो दोस्तों, आज 16 मई है जैसा कि हम सब जानते हैं, और आज का दिन समर्पित है उस शक्ति को जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। सोचिए, अगर एक पल के लिए इस दुनिया से सारा प्रकाश, चाहे वो सूरज की किरणें हो या आपके फोन की स्क्रीन, सब ओझल हो जाए तो क्या होगा। प्रकाश सिर्फ अंधेरे को नहीं मिटाता, यह विज्ञान, संस्कृति, कला और चिकित्सा का आधार है। आज का दिन खास तौर पर 1960 में भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। लेकिन प्रकाश सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। प्रकाश साइंस में फाइबर ऑप्टिकल से इंटरनेट हम तक पहुँचाता है, मेडिसिन में लेजर सर्जरी और डायग्नोस्टिक जान बचाते हैं, सस्टेनेबिलिटी में सोलर एनर्जी भविष्य का रास्ता है, और हाँ, हमारे साहित्य में तो कहा ही गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश आशा का प्रतीक है दोस्तों, ज्ञान का प्रतीक है। तो आज के दिन चलिए अपने जीवन के उस प्रकाश को धन्यवाद कहिए जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो आपके गुरु हो, माता पिता हो या आपकी अपनी मेहनत। और हाँ, आज एक और खास दिन है। आज जहाँ हम रोशनी का उत्सव मना रहे हैं, वहीं आज एक बहुत ही जरूरी दिन और है, नेशनल डेंगू डे। यानी आज का दिन है खुद को और अपने परिवार को एक छोटे से मच्छर लेकिन बड़ी बीमारी से सुरक्षित रखने का संकल्प लेने का। डेंगू, जिसे हम अक्सर हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हम सबको लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेंगू फैलाने वाला एडिस एजिप्टी मच्छर ज्यादातर दिन में ही काटता है, और इसे पनपने के लिए गंदा नाला नहीं बल्कि आपके घर के गमलों, कूलर या पुराने टायरों में जमा साफ पानी चाहिए होता है। तो आज के दिन बस तीन छोटी बातें याद रखनी है। अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें, पूरी बाजू के कपड़े पहने और सोते समय मच्छरदानी या रिप्लेट्स का इस्तेमाल करें। अगर तेज बुखार, सिरदर्द या जोड़ों में दर्द हो तो खुद डॉक्टर न बने, तुरंत जांच कराएं। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। हमें अपनी सेहत की कमान खुद संभालनी होगी। इस जानकारी को अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा। सो बनारस, आज की बात हो गई, बीते कल की बात हो गई, और आज के स्पेशल डे की भी बात हो गई। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: दोस्तों, क्या आपको याद है वो समय जब हम आंगन में बैठकर दादा दादी से कहानियां सुनते थे? उस मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो लोकगीत और वो सादगी। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम ये सब कहीं पीछे छोड़ आए हैं।

0: लेकिन साहित्य की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने इन यादों को अमर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ललित निबंधों के सम्राट डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी की। बनारस कोई शहर नहीं है दोस्तों, बनारस एक एहसास है। और जब इस एहसास को विद्या निवास मिश्र जैसे विद्वान की दृष्टि मिलती है तो वह साहित्य बन जाता है। मिश्र जी कहते थे कि काशी केवल भूगोल नहीं बल्कि एक शाश्वत चेतना है। विद्या निवास जी का काशी से रिश्ता महज रहने बसने का नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। उनके लेखन में काशी के बारे में ये बातें हमेशा उभर कर आई। पहला, पांडित्य और सरलता का संगम। जैसे गंगा में गहराव भी है और बहाव भी, वैसे ही मिश्र जी का व्यक्तित्व था। उन्होंने काशी की विद्वता को किताबी बोझ नहीं बनने दिया बल्कि उसे ललित निबंधों के जरिए आम आदमी तक पहुंचाया। घाटों की संस्कृति। उनके लिए काशी के घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं थे। वो मानते थे कि इन घाटों पर सुबह की पहली किरण और शाम की आरती के बीच जो ठहराव है वही जीवन का असली दर्शन है। दोस्तों, मिश्र जी कहते थे कि काशी इस ब्रह्मांड का केंद्र है। यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है और जीवन एक निरंतर बहती धारा। मिश्र जी ने जब भी लाग्यो ठुमक चलत रामचंद्र या फागुन दुई रे दिना जैसे विषयों पर लिखा, उसमें काशी की मस्ती और यहाँ की लोक संस्कृति की खुशबू हमेशा शामिल रही। विद्या निवास जी ने काशी को शब्दों में ऐसे पिरोया कि जैसे कोई मणिकर्णिका पर मोक्ष की तलाश कर रहा हो। उन्होंने दिखाया कि काशी पुरानी होकर भी हर रोज नई कैसे रहती है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, विद्या निवास मिश्र हमें याद दिलाते हैं कि शहर की स्मार्टनेस उसकी सड़कों में नहीं उसके चरित्र और संस्कारों में होती है। और काशी का चरित्र है सबको अपना लेना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप 80 घाट पर चाय की चुस्की ले या दशाश्वमेध की भीड़ में खो जाएं, तो याद रखिएगा कि इसी भीड़ और शांति के बीच विद्या निवास मिश्र जी ने उस अमृत को खोजा था जिसे हम बनारसीपन कहते हैं। आज उनकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ एक लेखक नहीं हमारी संस्कृति के रखवाले थे। उनकी पहली किताब चितवन की छा ने साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया था। क्या आप जानते हैं उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वे राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वो कहते थे कि भारतीयता कोई शब्द नहीं एक एहसास है। आज हम सब मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी जड़ों को भूल रहे हैं दोस्तों, लेकिन मिश्र जी की किताबें जैसे तुम चंदन हम पानी या फागुन दुई रे दिना पढ़िए, आपको एहसास होगा कि असली सुकून तो अपनी जड़ों से जुड़ने में है। मिश्र जी ने सिखाया कि अपनी भाषा पर गर्व करना सीखो। अगर आप भी आज की भागदौड़ से थक गए हैं तो एक बार उनकी कोई किताब उठाकर देखिए। यकीन मानिए, आपको लगेगा कि आप अपने गांव के पुराने पीपल के पेड़ की छांव में वापस आ गए हैं। तो चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं कि अपनी भाषा और अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले विद्या निवास जी का वो मशहूर भाव, मृण्मय से चिन्मय की यात्रा यानी मिट्टी से चेतना तक का सफर हमेशा याद रखिएगा। काशी रत्न के आज के इस अंक में बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: तो बनारस, देखते देखते समय कब खत्म होने को आ गया पता ही नहीं चला, लेकिन क्या करें, बातें इतनी सारी होती हैं लेकिन समय को भी ध्यान रखना होता है। तो बस अब आपसे अनुमति चाहूंगी इस वादे के साथ कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे। डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी सैटरडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: करूंगा। केवल भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
4: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में

0: प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो तो किस शहर में परीक्षा देना चाहते।
0: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपोलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 1 किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया।

बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ

0: 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अंजलि शर्मा का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबला संगति अशेष नारायण मिश्रा की है। तो आइए सुने डॉक्टर अंजलि शर्मा का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने डॉक्टर अंजलि शर्मा का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी सुना। आपके साथ तबला संगति अशेष नारायण मिश्रा की थी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं कि इनका सितार वादन आप दिन 12:45 पर भी सुन सकते हैं।

पीटीएम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। पीटीएम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में।

0: में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975

0: को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वागदेवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगे, CNG के दाम 2 रुपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब के

0: का शीर्षक है 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़राई के दौरान अबूधाबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबूधाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तबानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जैतन से दो तरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती माहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम मुआहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, ज़री टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर

मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि इन दिनों
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मधुरिमा।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
10: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा सुनने वाले सभी साथियों को प्रशांत परांजपे का प्यार भरा नमस्कार।

ये आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म का नाम आए दिन बहार के गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का प्रोग्राम मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी

बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम यादों की बारात, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
1: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
2: इन लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। विवादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत, उस लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम यह आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
1: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम से सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। मशीन का औपचारिक उद्घाटन सदर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम उपस्थित रही। स्थापित की गई मशीन अत्याधुनिक 4K अल्ट्रा HD विजन सिस्टम से लैस है। मशीन की विशेषताओं के बारे में महात्मा विदुर राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुहिन वशिष्ठ ने बताया।
3: सरकार ने ये मशीन उपलब्ध कराई है लेप्रोस्कोप। इसके द्वारा आप क्या होगा कि सिर्फ छोटे से चीरे लगा के दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर के सभी ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि क्या फ़ायदा होगा, पहले चीरा लगता था बड़ा, उससे खून भी ज़्यादा बहता था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते थे, दर्द ज़्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
1: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विद्युत प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका

0: अंबिका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्व करता है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही है, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी साझा किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा पीएचआर प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
1: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
2: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पझिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को ₹50 प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डाइटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। एनआरसी के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र पर भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयां, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जांच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एनआरसी में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी, तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुउद्देश्य ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने

0: क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1,242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री हरीश चंद्र ने गरला पीतपुर पोस्ट चकिया जिला चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री सती उर्फ संध्या दिनांक 3 मार्च 2026 से कहीं लापता है। सती उर्फ संध्या के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 4.5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और एकहरा बदन है। इन्होंने लाल रंग की समीज और काले रंग की सलवार पहनी है और पैरों में प्लास्टिक की चप्पल पहनी है। सती उर्फ संध्या के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया कोतवाली चकिया जनपद चंदौली से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम सती उर्फ संध्या है। श्री चंद्रजीत ने ग्राम व पोस्ट आलमपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी सुमन 9 अप्रैल 2026 शाम 4 बजे से कहीं लापता है। सुमन पत्नी श्री चंद्रजीत के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 43 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है और रंग गोरा है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने पीले रंग की साड़ी और पीला ब्लाउज पहना है और पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। इनके माथे पर कटे का निशान है। सुमन पत्नी श्री चंद्रजीत के बारे में सूचना मिलने पर कृपया थाना कोतवाली अलीनगर जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम सुमन है। श्री पीयूष मौर्य ने ग्राम इटवा थाना बलुआ जनपद चंदौली से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी आंचल मौर्य दिनांक 8 अप्रैल 2026 से कहीं गुमशुदा है। श्रीमती आंचल मौर्य के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है, रंग गेहुआ है और एकहरा मजबूत जिस्म है। इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी है। श्रीमती आंचल मौर्य पत्नी श्री पीयूष मौर्य के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना बलुआ जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। श्री पन्नालाल पाल ने ग्राम भवानीपुर थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री सरिता पाल 18 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से कहीं गुमशुदा है। सरिता पाल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका रंग गोरा है, चेहरा सामान्य है और एकहरा बदन है। इनके पास स्कूल बैग है। सरिता पाल पुत्री श्री पन्नालाल पाल के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। श्री अमृतलाल कन्नौजिया पुत्र श्री मोतीलाल ने बेर्रा थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री सोनी कन्नौजिया दिनांक 25 अक्टूबर 2025 दिन 1 बजे से कहीं लापता है। सोनी कन्नौजिया के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 4 फीट 9 इंच, इनका चेहरा लंबा है और रंग गोरा है। इन्होंने नीले रंग का टी शर्ट और लेगिंग्स पहना है। इनका एकहरा बदन है। सोनी कन्नौजिया पुत्री श्री अमृतलाल कन्नौजिया के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से संपर्क करें। श्रीमती धर्मशीला पत्नी श्री छन्नेलाल निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री काजल दिनांक 28 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से कहीं लापता है। काजल पुत्री श्रीमती धर्मशीला के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र करीब 25 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है और एकहरा बदन है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने गुलाबी रंग का सूट पहना है और पैरों में चप्पल पहनी है। काजल पुत्री श्रीमती धर्मशीला के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना जलालपुर जनपद

जौनपुर से संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम काजल है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया तारिक है। मैं इरम इनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बैच 2025 से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है खुद पर एतमाद। निशानों से नहीं हौसलों से पहचान बनती है, निशानों से नहीं हौसलों से पहचान बनती है, खुद पर यकीन हो तो हर जीत आसान बनती है। शहर के कोने में एक पेंटर रहता था। वो अपनी बनाई गई तस्वीरों के लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर था। एक दिन उस पेंटर ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखने के बाद उसे लगा कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी इस तस्वीर को लोगों को दिखाया। वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे उस तस्वीर के बारे में बताया और कहा कि देखो, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम वाकई जानना चाहते हो इसमें कोई कमी है या नहीं, तो तुम इसे एक ऐसी जगह ले जा कर रख दो जहाँ से लोगों का आना जाना हो, और साथ ही में इसके एक बोर्ड भी रखना जिस पर तुम ये लिख दो कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उस पर निशान लगा दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानी और बिल्कुल वैसे ही किया। अपनी बनाई हुई तस्वीर को उस जगह पर रख के वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर निशानों से भर गई थी। वो ये देखकर बहुत मायूस हुआ। वो अपने दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने इसमें इतनी गलतियाँ निकाली हैं कि इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उसके दोस्त ने उसकी बात सुनी और वो कुछ देर चुप रहने के बाद उससे कहा कि सुनो, तुम अब एक काम करो, तुम दोबारा एक ऐसी ही तस्वीर बनाओ और उसे उसी जगह पे ले जा के रख दो, लेकिन इस बार तुम उस बोर्ड पे ये लिखना कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानते हुए ऐसे ही किया। दोबारा वैसी ही तस्वीर बनाई, लेकिन इस बार उसने ये लिखा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए, और उसे वहाँ पे रख के वहाँ से चला गया। जब शाम हुई तो वो वापस लौटा। वो अपनी तस्वीर को देख के हैरान रह गया क्योंकि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं थी। वो अपने दोस्त के पास वापस गया और उसे सारी बात बताई। उसके दोस्त ने कहा कि सुनो, जो लोग होते हैं उनका काम होता है चीज़ों में, लोगों में कमियां निकालना, गलतियां निकालना, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप इस कमी को ठीक कीजिए या फिर बताइए कि ऐसे इसे कैसे ठीक की जाए, तो वो लोग खामोश हो जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और वो करना चाहिए जो हमें सही लगता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उस दिन उस पेंटर के एक बात समझ में आई, खुद पर एतमाद होना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इससे हम हर इम्तिहान जीत सकते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़ हुस्ना है। हम इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका टॉपिक है डिलीट बटन। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ का एक दिन डिलीट करने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन चूज़ करेगा? क्या वो दिन जब सब कुछ गलत हुआ था, या वो दिन जहाँ से सब बदला? ये कहानी है नैना की। नैना एक नॉर्मल सी कॉलेज जाने वाली लड़की थी, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, पर थोड़ी सी सेल्फ डाउट वाली। हर चीज़ परफेक्ट करने की आदत, और जब परफेक्ट ना हो तो ख़ुद को इल्ज़ाम देने की आदत। एक दिन उसके फ़ोन पर एक अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन डिलीट करो। पहले उसने इग्नोर किया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया। क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसने ईमेल ओपन किया, अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अपना वो दिन चुनो जो तुम मिटाना चाहती हो। नीचे एक बटन था सेलेक्ट। नैना की माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा ज़िंदगी में हर हार ज़रूरी होती है। जीत तुम्हें खुशी तो देती है, पर हार तुम्हें मजबूत बनाती है। पर नैना को ये बातें थोड़ी फिल्मी लगा करती थी। उसे लगता था डर का क्या फ़ायदा अगर उसे अवॉइड किया जा सकता हो।

0: उसने बिना सोचे एक दिन चुन लिया, वो दिन जब वो इम्तिहान में फ़ेल हुई थी, वो दिन जब उसने ख़ुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस किया था। उसने क्लिक किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन सब नॉर्मल था, कॉलेज, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, पर कुछ अलग था। नैना को वो हार याद ही नहीं थी, ना वो रात, ना वो आंसू, ना वो अफसोस, जैसे वो दिन कभी मौजूद ही नहीं था। शुरू में उसे ऐसा लगा कि मुझे हल्का महसूस हो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ अधूरा लगने लगा, जैसे कोई मखसूस चीज़ जो उसे याद ही नहीं आ रही है। कुछ दिन बाद एक और इम्तिहान आया, इस बार नैना पास हो गई अच्छे मार्क्स के साथ। सब खुश थे, पर नैना कुछ फील ही नहीं कर पाई, ना रिलीफ, ना एक्साइटमेंट, ना कॉन्फिडेंस, ना खुशी, उसे सिर्फ एक खालीपन महसूस हो रहा था। तब उसे अपनी माँ की बात याद आई, हार तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। तब उसे समझ आया, उसने सिर्फ एक दिन नहीं डिलीट किया था, उसने वो स्ट्रगल डिलीट किया था जिसने उसे फील करना सिखाया था। उसने दर्द नहीं, अपनी तरक्की की बुनियाद डिलीट कर दी थी। उस रात नैना ने अपना फ़ोन उठाया वो ईमेल ढूंढने के लिए, पर इनबॉक्स में कोई ईमेल था ही नहीं, डिलीट बटन कभी था ही नहीं। वो खुद ही अपने दर्द से भाग रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में हम कुछ डिलीट नहीं करते, हम बस उन्हें महसूस करना बंद कर देते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अपने फेलियर, अपने दर्द को मिटाने की कोशिश मत करो, वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम बिना दर्द के कभी बन ही नहीं पाते। इसी स्टोरी पर मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। शुक्रिया
1: सामईन, ये था हमारा आज का खुसूसी ओबी प्रोग्राम कैंपस डायरी, जिसमें हमने इरम मेडिकल कॉलेज के बासलाहियत तलबा की खूबसूरत तख्लीकात आप तक पहुँचाईं। यकीनन इन नौजवान आवाज़ों में आपने जज्बों की सच्चाई, ख्याल की ताजगी और मुस्तकबिल की रोशन झलक महसूस की होगी। यही नौजवान हमारे आने वाले कल के मेहमान हैं, जो न सिर्फ जिस्मों का इलाज करेंगे बल्कि अपने शऊर, हसासियत और तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए माशरे की फ़िक्री व जज्बाती रहनुमाई भी करेंगे। आज की महफिल इस बात की गवाह रही कि इल्म और अदब जब एक साथ चलते हैं तो शख्सियत में एक नया वक़ार और निखार पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इन उभरते हुए कलमकारों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ।
1: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में, क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 9:50 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुत है लोक संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और

0: सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने गीतांजलि मौर्य के स्वर में लोकगीत सुने। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं, इनके गाए लोकगीत आप लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सागर से। आवाजें आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म वक्त से, आवाज आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, गीतकार हैं साहिर, संगीत दिया है रवि ने।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने फिल्म उमरा औजान का एक गीत सुना। गीतकार थे शहरयार, संगीत दिया था खय्याम ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म तेजाब का एक गीत। आवाजें अमित कुमार, अनुराधा पौड़वाल और साथियों की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये गीत हमने लिया है फिल्म त्रिशूल से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार हैं साहिर, संगीत दिया है खयाम ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म दहलीज से, आवाज महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। गीतकार हैं हसन कमाल, संगीत दिया है रवि ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम सावन की घटा, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर।

0: सावन की घटा इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की

0: इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति है अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
3: हाँ

0: उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिकेटर है उसमें लेवल है।
1: नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52। और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
2: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं अहमदनगर बैठिया से बद्रुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ सर।
0: तो आज तो बिस्मिल्ला आपसे हो रही है और अच्छा लगा कि हमारे पुराने श्रोता और स्थानीय हमारे बनारस के आपका फोन लग गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत दिनों से ट्राई मार रहे थे, लग नहीं रहा था।
0: जी जी, तो आज तो शुरुआत में ही लग गया, बहुत खुशी की बात है। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक है सर।
0: जी
2: बढ़िया चल रहा है।
0: और प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे?
2: प्रोग्राम तो अच्छा ही लग रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर।
0: जी
2: हाँ, थोड़ा ये कहेंगे कि आप बहुत स्लो बजता है, मतलब कि बहुत धीमा बजता है।
0: इसमें जानते हैं हम लोग के यहाँ इसमें कंसोल पे एक वो रहता है, इंडिकेटर है, उसमें बत्ती लाल नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और इस तरह का कंट्रोल जैसे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम और फिर सारनाथ में भी होता है।
2: ठीक ठीक, हमने सोचा कि आपसे बता दें, हो सकता है कि थोड़ा तेज हो जाए।
0: हाँ नहीं, हमारे यहाँ से जब हम रहते हैं, हमारी ड्यूटी में क्या स्थिति होती है?
2: आपकी ड्यूटी में ठीक होता है, जब जिसे कोई और सोता होता है ना, कोई और भी।
0: हाँ इसलिए तो
2: उनकी आवाज जो है तो जो वो पढ़ने लगती है नाम तो बहुत स्लो रहता है।
0: हाँ तो वो
2: तेज हो जाता है।
0: वो हमारे जो साथी अनाउंसर है वो हर कोई लेवल को ध्यान नहीं रखता, सबको उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिकेटर है उसमें लेवल है वो पूरा जाना चाहिए।
2: जी जी।
0: अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
2: एक फिल्म आई थी सर, नियाज और नमाज। उसमें कव्वाली सुनना है, तेरे दर पे झुके मेरा सर।
0: तो ये कव्वाली आप तक पहुंच रही है, रफी साहब की आवाज है, अंजुम जयपुरी ने इसे लिखा है, श्याम जी घनश्याम जी का संगीत है।
2: जी जी
0: सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: अरुण सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी।
1: सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: क्या कहने, आपका फोन लग गया, बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत सर मेहनत करनी पड़ी तब जाके लगा।
0: हाँ दरअसल हमारे श्रोता एक साथ बहुत सारी जगहों से प्रयास करते रहते हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आप शुरुआत में उतने वर्षों तक आपके नाम तो हमारे प्रोग्राम में आते थे, लेकिन आपसे हमारी बातें इधर होनी शुरू हुई हैं।
1: हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगता है आपका पेशकश जो आप पेश करते हैं ना कार्यक्रम में।
0: जी जी जी, और ऐसे आपका कामकाज आपने क्या बताया था अपना?
1: सर मेरा कंपनी में है, प्राइवेट जॉब है।
0: जी जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? तो सतीश जी आपका फोन तो कट गया, एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश।
0: जी नमस्ते, स्वागत है आपका।
1: जी ने डायल किया है फोन नंबर 2221052102। अब बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण सर से। प्यार बड़ा नमस्कार।
0: और हम सोचे कि उस जगह आप कहेंगे कि इमृति यादव से आप बातें करेंगे, और हम तो वास्तव में इमृति यादव से ही बातें कर रहे हैं। श्रोताओं को बता दें,
1: आप आवाज पहचान गए मतलब।
0: तो आप अपनी आवाज में अपना परिचय बता दीजिए श्रोताओं को।
1: ग्राम बैठी पोस्टियांदोली से इमृति यादव।
0: तो इमृति जी स्वागत है आपका। आपका गांव का नाम बरठी है, अब ये मुझे याद हो गया है।
1: आप व्हाट्सएप में भी पढ़ते हैं, कल भी हमने सुना था।
0: जी बिल्कुल, अगर अशोक जी थोड़ा सा उसको भट्टी भी लिखते हैं तो मुझे याद है कि अब आपके गांव का नाम बरठी है। जी जी जी जी बिल्कुल। तो अभी प्रोग्राम सुन रही हैं अब आप, मतलब हमारे कार्यक्रम को सुनते हुए आपको आनंद आने लगा है।
1: एक हफ्ते से आपका प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ और रिलेशन से एक हफ्ता हुआ आने को।
0: जी जी, अच्छा कहीं आजकल शादी ब्याह का मौसम है।
1: हाँ तो थोड़ा घूमने फिरने गए, शादी नहीं थी मतलब इसी तरह गए थे घूमने के लिए।
0: जी बिल्कुल, हालांकि मौसम बहुत गर्मी और उमस का आ गया है इस समय, लेकिन फिर भी जब
1: जी तो यही कहेंगे जो गर्मी पड़ रही है अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, हाइड्रेट रहें और हमेशा कहीं भी निकले तो थोड़ा सा अपने पास जो है जो सुविधाजनक है उसको लेकर ही निकले।
0: जी जी बिल्कुल, तो आपने हाइड्रेट वाली बात कही तो बड़ा अच्छा लगा हमें सुन करके।
1: खान पान पे ध्यान रखें।
0: जी जी जी, तो अब बता दें कौन सा गीत आप सुना रही हमें।
1: आज हमको एक फिल्म का नाम थोड़ा सा याद नहीं है
0: जी,
1: और एक गीत है उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, तो वो है सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुड़ है मेरे यार में। यही वाला गीत सुनवाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है गीत।
0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत है।
1: और तो बताएं आप कैसे हैं।
0: हम अच्छे से हैं,
1: काफी दिनों बाद बात हो रही है तो हम सोचे कि भाई थोड़ा सा बात कर ली जाए, पहला कॉल है हमारा लग रहा है।
0: जी जी, शुरुआत में ही आपका फोन लग गया है तो बहुत खुशी की बात है।
1: एक बात कहना चाहते हैं।
0: जी बताइए।
1: जो मतलब पहले बेबाकी पे चलता था कॉल आप लोगों का, तो वो जो श्रोता नहीं सुन पा रहे हैं और उनके पास जो मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जिसके पास मतलब मोबाइल चलाने का नहीं होता है तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी।
0: जी बताइए।
1: शाम के 6:15 जो शुरू होता था ना पहले, ये वाला कार्यक्रम।
0: हाँ वो पहले हमारे यहाँ जो विविध भारती का प्रसारण है 6:15 जाया करता था, और उस दरमियान बुधवार और शुक्रवार के दिन आप हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रसारित होता था। जी जी,
1: देखिए हम मतलब तमाम अधिकारी तक पहुँचाना चाहते हैं इस बात को।
0: जी जी, हम लोग भी प्रयासरत हैं और बातें हम लोग भी कर रहे हैं कि कुछ अगर और तब्दीलियाँ वहाँ हो जाएं, कुछ और प्रोग्राम वहाँ शामिल हो जाएं जिनमें श्रोताओं की सीधी सहभागिता हो।
1: एक बात और है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है इसमें सिर्फ डबल आवाजें आ रही हैं।

0: ये डबल आवाज ये हमारी ओर से नहीं होती है दरअसल
1: जी, तो हम बात कर रहे हैं आपसे ना तो
0: जी जी
1: हमें सुनाई दे रही हमारी आवाज।
0: हाँ ये इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये अच्छा हर श्रोता में नहीं होता और हर किसी को ऐसा नहीं सुनाई देता है, कुछ इलाकों में नेटवर्क की ऐसी समस्या है।
1: हमारे में ऐसा सुनाई दे रहा है इसलिए कह रहे।
0: तो आप जैसे अभी कुछ ईयरफोन या हेडफोन जैसा कुछ लगाया है क्या?
1: नहीं कुछ नहीं, बस मोबाइल से सीधे बात कर रही
0: हूँ। कुछ जगहों पे और कुछ नेटवर्क से ऐसी स्थितियां हैं। ये जो गीत आपने बताया है ना, ये सरहद पार फिल्म का नाम है।
1: याद हो गया सरहद पार।
0: जी जी, तो गीत इमरती आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: ओके सर, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: सादर प्रणाम, सुप्रभातम।
0: सुप्रभातम, सादर प्रणाम आपको भी असगर जी। आप शिवपुर से हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, बताएं।
1: जी जी, अब सुन रहे हैं, 5 मिनट आपको दे, आपने बोला तो आपका हमारा बायोग्राफी बताई है। अब हम आपको बहुत पहले ले जा रहे हैं, जब इन्हें सऊद यहाँ आए थे। आई डोंट नो आप रहे या नहीं, इन्हें सऊद यहाँ आए थे उस वक्त का राशन का भाव हम आपको बता रहे हैं।
0: जी,
1: जो इस वक्त किलो नहीं था।
0: इब्ने सऊद,
1: बारला, 4 शेर जौ, 4 शेर चना, 2 शेर चीनी, 2 शेर चावल और 5 शेर टाइप का बात बता रहे हैं।
0: अच्छा, वो समय रहा होगा कि बहुत से लोग तो नौकरी करते ही नहीं थे।
1: वो हमारे चाचा नेहरू के इन्विटेशन पर आए थे।
0: जी जी जी,
1: नंदा की यूनिवर्सिटी के पास खड़े थे, अब्बा जी के साथ छोटे थे, यहाँ से गए। वो तो वापसी में भारत के लिए एक जहाज खजूर भेजा था।
0: वाह,
1: वो एक जहाज खजूर भेजा था, वो खजूर भी कंट्रोल में चारा में शेयर बिका था।
0: अच्छा, वो मतलब वो भी राशन से मिलने लगा था।
1: हाँ, उसको रखा दिया गया था, उन्होंने फ्री भेजा था, तो उसका चारा में शेयर के हिसाब से कंट्रोल के दुकान में लगा दिया था चारा में शेयर।
0: बहुत बड़ी बात है। ये लगभग किस सन की बात होगी? ये
1: आपको देखना पड़ेगा। सऊद आए थे, चाचा नेहरू गए थे तो उन्हीं के इनविटेशन पर वो आए थे।
0: जी जी जी,
1: हम बहुत छोटे थे और अब्बा जी हमको लेके गए थे, हम देखे कहा थे 80 पर जो यूनिवर्सिटी का गेट है, बीएचयू का गेट है ना।
0: जी जी जी जी,
1: उसी रोड पर पीछे हम लोग थोड़ा पहले खड़े थे और देखा था। एक
0: क्या कहने, बहुत पुरानी यादें हैं। तब से लेकर अब तक बनारस में भी बड़ा बदलाव, उस समय तो चारों ओर खाली जगह रही होगी।
1: ये चीज जो आपने बोला ना पुराने के लिए कि आप हमारा बताएंगे, तो आप टाइम कहाँ देते हैं? टाइम दीजिए तो हम आपको 15 जून 1942 से लेके आज तक का पूरा।
0: हाँ, अब देखिए असगर जी, इतने ही टाइम में 2-2 मिनट भी अगर आप इस तरह की बातें बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक धारावाहिक जैसा हो जाएगा।
1: हाँ, तो वही तो हम बताते हैं ना, लेकिन आप चांस क्या देते?
0: नहीं, चांस तो जैसे दिया ना, अब इसमें जैसे इसमें चांस 15-16 आदमी को देना पड़ता है।
1: बात हुआ, हम चाह रहे थे, दुआ कर रहे थे।
0: जी जी जी, तो बात हो गई, हमें भी बहुत खुशी हुई। अब बता दें कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: हाँ, अब गीत देखिए दो है उसमें, शायद आपके पास एक तो चल चल रहे नौजवान, क्या है तेरी पगड़ी और क्या है तेरी शान, किस फिल्म का हमको नहीं मालूम। दौलत के झूठे मसे में दूर, गरीबों की दुनिया से अच्छे हो दूर, अभी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ओढ़न माटी बिछा माटी का तन बन जाए।
0: गाना भी आपने बहुत अच्छा गाया।
1: सुन मेरे बंदूरे, सुन मेरे निजवा, सुन मेरे साथी।
0: बहुत बढ़िया गीत आपको सुनवा रहे हैं असगर जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: सर मैं गुप्ता से बोल रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश से।
0: जी बहुत स्वागत है मुरलीधर जी। और अब तो गर्मियों में कचहरी का वक्त बदल जाता है।
1: बदल गया है सर, सुबह की मॉर्निंग कचहरी है साथ में।
0: इस वक्त में ये फायदा है कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमारे जो दिन के प्रसारण है वो भी अब आप पूरी तरह से सुन सकते हैं तन्मयता के साथ।
1: ये 2 महीने का कचहरी और रहता है कचहरी।
0: जी जी और अच्छे से है। दुद्धि में लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या है।
1: इस समय फिलहाल 15-20 मिनट है।
0: अच्छा, बाहर आप लोग जब दूसरे किसी जगह के अपने परिचितों से बात करते हैं तो आवाज कटती है या फिर इसी तरह की आती है?
1: नहीं, कभी कभी कट रहा है।
0: जी जी
1: तो हल्का फुल्की आवाज आती है।
0: हाँ
1: नेटवर्क कटती है, ठीक ठाक रहता है।
0: जी बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही। बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: फिल्म का नाम ढूंढेंगे सर। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो।
0: फिल्म का नाम है होली आई रे, लता मंगेशकर की आवाज है। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। मुकेश ने भी इसे गाया है। कौन सा सुनना है आपको?
1: जो लता वाला सुना दीजिए या मुकेश वाला, कोई भी सुना दे सर।
0: ठीक है, तो हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, इंदिवर के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत मुरलीधर जी।
1: ओके सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप हैं वो आवाज जो दीवार से छन के निकल के, आप अपने स्टूडियो से छन के निकल के आ जाते हैं अपने टावर में, टावर से छन के निकल के आप रेडियो में आते हैं, तब नाम होता है हेलो फोन इन फरमाइश। सीधा हमने कॉल मिलाया 222-10-52 यानी 221-05। अरुण सर से बात हो रही है, प्यार भाई नमस्कार।
0: हाँ, बहुत स्वागत जी आपका प्रोग्राम में, और बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है।
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करोटा लोटा वाराणसी से।
0: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी हाल चाल सब ठीक है। अरुण सर अपना बताइए।
0: हम लोग भी अच्छे से हैं, लगन का समय है तो कामकाज बढ़िया चल रहा होगा आपका जो टेलरिंग वाला है।
1: जी जी क्या नाम है, आप तो खाली हुए तो आज तो क्या नाम है, आज क्या नाम है मिलाएंगे और थोड़ा काम कम हुआ तो थोड़ा फुर्सत मिला है।
0: बिल्कुल, तो अच्छा लगा आपसे हमारी बातें हो रही हैं, श्रोताओं से भी तालमेल बनाए हुए हैं आप। बहुत सारे लोग जो श्रोता आपस में पहले मिलते जुलते थे, उन्होंने वो सिलसिला थोड़ा सा उनका रुक गया है, लेकिन आपका जारी है अभी भी।
1: चलिए तो धन्यवाद, श्रोताओं का बड़क्कन है कि याद करते रहते हैं और अच्छी बात है कि हम लोग का तालमेल बैठा हुआ है।
0: हाँ हाँ हाँ, तालमेल बैठे रहना चाहिए, जीवन में मसरूफियत और व्यस्तता तो हर किसी के आते रहता है, लेकिन यह है कि जो संबंध हैं वो बने रहें तो अच्छा है। एक वक्त था कि बहुत सारे श्रोता आपस में मिलते जुलते थे, बहुत से लोग यहाँ मिलने चले भी आते थे, लेकिन अब ये हम लोग भी समझते हैं कि हर कोई थोड़ा सा समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव जिंदगी में आते
1: हैं। एक मिनट अरुण सर, एक फोन आ रहा है, उठा लें।
0: कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: अरुण सर गाना बोल दिए तो आप जख्म का।

0: इसी तरह गाना है।
1: बिल्कुल यही गाना, और हमारे ख्याल से पिछले भी किसी प्रोग्राम में किसी श्रोता ने इस गीत को सुनना चाहा था।
0: जी अगर दिया होगा तो हमको गाना बहुत पसंद।
1: अच्छा, वो आपने नहीं सुना है?
0: जी सुना है।
1: तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं, आपके साथियों के फोन आपके फोन पर आ रहे हैं, तो अशोक जी गीत सुनते हैं।
0: हम एक बात हम कहना चाहते हैं कि साई सद्धू जी हमारे मालिक करें, उनका तंदुरुस्ती कायम रहे।
1: जी जी, हम लोगों की ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं दुआएं उनके लिए।

0: जी नमस्ते, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी थैंक यू सर, आप कैसे हो?
0: हम अच्छे से हैं। आप कौन सी जगह से, आपसे हमारी बात हो रही है?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया एक मीनार वाली मस्जिद के पास था, आरजे शबनम अब्बासी आपसे बात कर रही हूँ।
0: क्या कहने, शबनम अब्बासी आरजे भी हैं आप?
1: जी
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो किस जगह पे कौन सा प्रोग्राम होता है आपका?
1: सर मतलब गुरुवार को होता, तो वो जुमे के दिन होता, शुक्रवार को 11 से 2 बजे तक।
0: जी जी, और कैसे शौक हुआ आपका? बचपन से रेडियो सुनते सुनते आपको भी मन हुआ कि हम भी आरजे बन जाएं?
1: जी सर, मुझे बचपन से ही रेडियो का शौक था और मेरे पापा भी सुनते थे, मैंने सोचा आप लोग जैसे बोलते हैं ऐसे हमें बोलना चाहिए।
0: तो इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी?
1: जी जी सर, कहते नहीं है हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं, सर आपका पैगाम आया है हम आपको दिल से याद किया करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, अच्छे शेर भी आपने याद रखे हुए हैं करके। ऐसे रामपुर तो बहुत अच्छी जगह है, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं रामपुर से जो हमारे प्रोग्राम में फोन करते हैं। आपका फोन पहली दफे आया है, कभी आपने ये प्रोग्राम सुना है?
1: सर सुना नहीं था, मगर सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है, तो इसलिए हमने सोचा हम भी आपसे बात करें और बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते न दिल आपसे फिदा होता।
0: क्या कहने, सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे अशआर आपने याद करके रखे और सभी का दिल जीत लेती होंगी आप।
1: जी सर, बस आप लोगों की मोहब्बत है, सब लोगों की, जब हमें मतलब प्यार करते हैं हम आपसे करते हैं तो तभी हम जुड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और अब बता दें प्रोग्राम में कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: सर फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक।
0: अच्छा, आजकल तो बहुत सारे जो आरजे हैं नए दौर के वो गाते भी हैं, आपको कभी कुछ गाने वगैरह का शौक हुआ?
1: जी मतलब थोड़ा गुनगुना लेती हूँ।
0: तो जरा बताएं उसका मुजाहिरा करें अपने इस फन का।
1: जी कहते हैं सर, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ, याद एक पल में 100 बार करती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, अच्छा गाती भी हैं आप। जो गीत आपने बताया दिल तेरा आशिक फिल्म से, उसका मुखड़ा कौन सा है?
1: दिल तेरा आशिक खाली जो उसके
0: टाइटल सॉन्ग है इसका, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। आपने नाम अपना क्या बताया था शुरुआत में?
1: शुरुआत में मैंने ये बताया था, हम वो सर नफरत की तस्वीर मिटा दो, नफरत की तस्वीर मिटा दो, पीलो प्यार का जाम, मैं तेरी खुशबू, आज शबनम अब्बासी है मेरा नाम।
0: क्या कहने, यानी आप शबनम अब्बासी हैं। तो अच्छा लगा शबनम आपसे बात करके, हमारा प्रोग्राम सुनिएगा और फिर आपसे बातें होंगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह।
1: जी जरूर, अब इंशाल्लाह बात होती रहेगी।
0: जी बहुत शुक्रिया शबनम, नमस्कार।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 2221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग बुधवार को होती है वो आप सुन पाते हैं शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और हमारे केंद्र के प्रसारण आपको मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, वेव्स ओटीटी, डीटीएच और डीआरएम पर उपलब्ध रहते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति थी अरुण पांडेय की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा, इस छोटे से अंतराल के बाद।

कुछ लोग गजल जैसे होते हैं जो धीरे धीरे दिल में उतरते हैं और फिर मुस्कुराहट बनकर हर पल साथ चलते रहते हैं। उनका हर

तेरा जिक्र हो और दिल महक न उठे, ऐसी कोई दोपहर नहीं होती। इश्क अगर सच्चा है तो उसमें कभी दूरियां नहीं होती।

0: बहुत।
1: इस गजल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत स्वस्ति श्रीवास्तव को। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशां। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं शब्बीर कुमार और अलका याग्निक। आइए इनकी आवाज में सुनते हैं ये गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शब्बीर कुमार और अलका याग्निक की गाई गजलें। आइए सुनते हैं इनकी गाई अगली गजल।

अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सितार वादन। कलाकार हैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, राग भीम पलासी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष नारायण मिश्रा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजलि शर्मा का सितार पर बजाया राग भीम पलासी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आशीष नारायण मिश्रा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ

0: का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 और 4 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए पहले खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं और उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना और जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीषा, जिनके पति का नाम है विनोद कुमार, पता है ग्राम सेवखर कला, पोस्ट भोजापुर, थाना और जनपद चंदौली, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 23 वर्ष, लंबाई 4 फुट 6 इंच, रंग गोरा है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना और जनपद चंदौली, मोबाइल नंबर 9454403183। एक बार फिर से सुन लें, 9454403183 और 8881366855।

0: इनकी आयु है 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना धीना, जनपद चंदौली। मोबाइल नंबर है 9454403185 और 7390091420 और 9795159019। इन नंबरों पर आप सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आज के कलाकार होंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता। शाम 7:31 पर हिंदी वार्ता के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शशिकला सिंह की वार्ता, जिसका विषय होगा हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर ज्योति कुमार सिंह से की गई बातचीत, विषय होगा आम, अमरूद और आंवला की पौध प्रवर्धन तकनीक। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे गीतांजलि मौर्य के गाय लोकगीत का। इन्हीं के गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। युवा साथी अपने कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:15 पर सुनेंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। बच्चे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 पर। और अब से थोड़ी देर में यानी 1:15 पर बहने अपने कार्यक्रम अंगनैया में गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी श्रुति शाश्वत और शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, विषय होगा पर्यावरण संरक्षण और हमारा स्वास्थ्य। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
2: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंध का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
1: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
3: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
1: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव,

थाना धीना जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदु देवी, जिनके पिता का नाम है रामलाल यादव, पता है ग्राम गोरखा पोस्ट धीना जनपद चंदौली, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है।

0: गोरखपुर के रुकन असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जिज अफराद भी मौजूद थे। ताल नादा और गोरखपुर में वाकई ये बैनुल अक्वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुइया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशे की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक़दा मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया जिसके बाद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक़दा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी AI पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में AI की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। ये दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जला जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए 188 रन का हदफ रखा जिसे लखनऊ की सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की जानिब से 38 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनावली सा बहिन लोगन के नमस्ते। अहम कहीं चंपा तुहों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो दीदी, तुहों के नमस्ते और बहनी लोगन के भी नमस्ते।
0: आज देखा हो चंपा,
1: हाँ?
0: बड़ा खास दिन हो और एकर तैयारी तो बहिन लोगन महीना दिन पहले से करत रहनी है। कुछ बहिन लोगन तो मान ला कई जौन

0: आज खास दिन है, एकर पूजा भी कैनी है। बाकी तोहू कैलू है का, देखलिए तोहू खड़ा रलू है।
1: काहे ना करी दीदी, तो हम कैली है, दीदी लोगन भाभी भौजी सब कैले स, आ
0: अच्छा।
1: काहे ना करे। ये देखा कितना खास त्योहार होला आसमाना,
0: हम्म।
1: कि व्रत पूजा लोग बिहने से उठ गल बा, जैसे कोनो से त्योहार रहे या फिर कोनो खास दिन रहे, उस
0: देखा।
1: तरह सब सब रहे। देखा उठ गए हैं, अपन जो नित्य कर्म हो तो उन करके अपन पूजा पाठ का तैयारी सब रहे से करत रहे हैं, कि आज पूजा करेंगे। वट सावित्री पूजा देखा रहल है, जो उनकी पीपल के पेड़ पर चाहे वट के पेड़ पर जाके फेरी
0: देखा
1: लेवल
0: भाई,
1: जाला।
0: आज के दिन का बड़ा महात्म्य हो, पीपल का नहीं, आज बरगद के पेड़ का देखा पूजा होला। और बहिन लोगन जौन अपने अखंड सौभाग्य खातिर, लंबी अपने पति का लंबा उम्र खातिर, और अपने जौन की परिवार का उनकर सबकर स्वास्थ्य बढ़िया रहा, घर में जौन लड़का बच्चा हुआ वो अच्छा रहा, स्वस्थ रहा, यही कामना के साथे देखा आज का जौन है ई बट सावित्री का पूजा बहिन लोगन करत हैं। और मान्यता है कि जौन जेठ का महीना है, एक अमावस्या में एकर पूजा होला आजू
1: हाँ
0: के दिना।
1: हाँ ये देखा बस सौभाग्य खातिर ना होला, ये देखा जेके जैसे कोनो संतान ना रहल ना, वो लोग भी कर सकेले नी पूजा। संतान के सुख खातिर भी करल जाला, और ये कहल जाला ना कि
0: देखा कहल ई
1: हाँ
0: जला, तू कहल चाह तू कि कई ठे कहनी। हाँ, बहुत
1: हाँ
0: पौराणिक मान्यता है, लेकिन एक खे जवन खास मान्यता है, बचपने से हम लोग अपने दादी के मुँहे, बुआ के मुँहे सुनत आयल बाड़ी जा कि सावित्री जवन रहनी
1: हाँ
0: उन अपने पति के लंबा उम्र खातिर दिखाई जौन है कि कैले रहनी। कहल भेल कहल भी गया है जौन कथा सुन ले बाड़ी जा कहानी में, कि सत्यवान नाम का जौन रहना, उनकर उम्र बड़ा छोटा रहल हो, लेकिन उनके साथे सावित्री का जब बियाह भयल तो उनके पता चलल कि जैसे उनकर शादी होत बा, उनकर उम्र केवल 1 बरिस का बचल बा, है ना।
1: अच्छा
0: लेकिन फिर भी जब उनके पता चल गल कि उनकर जौने दिन आयु खत्म होवे वाली है, वो दिन
1: हाँ
0: उनके साथे साथे रहनी, और जब उनकर आयु ले के यमराज जी जाए लगना, तब वो भी जौन है कि इतना हठ कई नहीं, उनके साथे साथे चल गई नहीं। अंत में उनकर त्याग, उनकर बलिदान, उनकर प्रेम देख करके अपने पति के प्रति, उन जो यमराज हुआ उनके सत्यवान के आयु दोबारा लौटावे के पड़ल, उनके जीवित करे के पड़ल। यही से देखा ई अखंड सौभाग्य का बात करल जाला कि ये व्रत के बहिन लोगन करे नहीं, जोने से कि उनके माथे का सिंदूर बनल रहा, है ना, उनकर सौभाग्य बनल रहा। लेकिन एक बात ई कहब चंपा, कि देखा एक ये जौन पूजा वो तो बट में होला, बरगद के पेड़ में होला, बाकी बड़ा दुख का बात है कि आज के समय में लोग जौन है कि हम तो सवेरे देखली है कि बरगद का पेड़ खोजत खोजत खोजत आने गाँव में चल गई नी, वहाँ बरगद का पेड़ रहल, वहाँ पूजा भयल। आए
1: हाँ, तो अब बरगद के पेड़ का पूजा तो भैया करल, बाकी देखा अपन पर्यावरण भी संरक्षण करे का हमहना कहीं जिम्मेदारी होला, काहे कि जो नी पर्यावरण है ना हमहने का, तो उसे देखा हमहने के शुद्ध वायु मिलेला, भोजन मिलेला, औषधि मिलेला, हमहने के कुछ कारगर भी मिलले।
0: बिल्कुल कहत हूँ। देखा पर्यावरण का बात करल जी भाई, और बात कही भी करल जी, बाकी जरूरी संदेश है जौने से बहिन लोगन के जानकारी और मिली, तो पहले संदेश हो जाओ फिर आगे बात कही करल जी।
1: ठीक है।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाह।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनो ना।
6: हाँ।
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
7: 054-222-7658।
5: 054-222-7658। 5858। लो अभी

0: फोन लगाता हूँ
1: 054-222-7658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: चंपा हो,
3: हाँ।
2: देखा आज खास दिन बाय भाई, लेकिन एक कहब बहन लोगन से कि पेड़ हो जितना भी अपने धरती पर हो ओकर बहुत ज्यादा उपयोग हमन के जिंदगी में। अब तू कल्पना कैला सोचला कि अगर पेड़ न रही तो मनई सांस का लेही। अब मनई नहीं, ये धरती पर जितना जीव जानवर हुआ पशु पक्षी हुआ सबके लिए, मैं कोई के ऊ जौन है कि जैसे जंगल बा तो वहाँ जानवर जानवर बाड़न रहत बाड़न, वैसे जौन पक्षी हुआ उनके लिए देखा पेड़ जरूरी है, नहीं तो वो भी नर रही है। माने सबकर ये जवान है कि धरती पर ना आपन कह सकल कि घर खाना पीना सब कुछ अपने पर्यावरण पर हो, है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आज हम यही पर एक बात कही सुनवा देते, पर्यावरण संरक्षण और हमारा स्वास्थ्य। डॉक्टर श्रुति शाश्वत से बतियावत है शिखा श्रीवास्तव बहने, तो बहन लोग ध्यान से सुने।
2: तो ये डॉक्टर श्रुति शाश्वत उपाध्याय से बत कही होते, चश्मा बढ़िया से लगा ला तब जौन है कि दिखाई। अब वहीं लोगन सुने।
4: श्रोता बहनी, आज हमरे साथ कार्यक्रम में आयल हैं डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी। ई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, और आज आप लोगन के जानकारी दी हैं कि जौन आपन पर्यावरण है वो कैसे हमन के स्वास्थ्य के प्रभावित करत। तो श्रुति उपाध्याय जी, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत ही।
5: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागणों को आभार।
4: आप बहनी लोगन के बताएं कि पर्यावरण हो लगा।
5: पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है, परि धन आवरण, जिसमें परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का अर्थ है परिवेश, यानी हमारे आसपास का माहौल वातावरण जिसमें रहते हैं हम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पर्यावरण जल वायु भूमि पेड़ पौधे जीव जंतु मानव और उसकी गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है।
4: ई तो आप पर्यावरण के बारे में बतौलिन। अच्छा
5: जी।
4: बहनी लोगन के बताएं कि ई पर्यावरण के से आप कहलिन है ना कि पानी है
5: जी, जी।
4: जमीन है पेड़ पौधा है, तो फरिया के बताएं कि कैसे बांटल गए।
5: जी, तो ये तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है भौतिक पर्यावरण, जैसे कि हमारी भू आकृतियां हैं, पहाड़ हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं, कुआं हैं, जलवायु मृदा चट्टाने खनिज। और दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव द्वारा निर्मित जो गतिविधियां हैं वो होती हैं, जैसे कि धर्म नैतिकता प्रथाएं लोकाचार व्यवहार।
4: माने ई कुल भी पर्यावरण में है।
5: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण का मतलब वो है जिससे हम अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करते हुए आगे बढ़ाते हैं और उनका संरक्षण करते हैं।
4: अच्छा।
5: तीसरा है जैविक पर्यावरण, जैसे कि जैविक का मतलब ही है जैसे कि हमारी वनस्पतियां हैं पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। इस प्रकार से पर्यावरण हमारा तीन भागों में बटा हुआ है।
4: अच्छा, जैसे आप संस्कृति या धर्म का बात कर ली है, तो हमार संस्कृति हमार धर्म कौन तरह से पर्यावरण से जुड़ल है ये बारे में।
5: पर्यावरण को बचाने का जो धार्मिक पक्ष है वो सबसे ज्यादा ये है कि हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में पारंपरिक विश्वास और मूल्यों का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ जैसे पेड़ है, नीम है, पीपल है, बरगद है, मदार है, अड़हुल है, जितने भी पेड़ हैं उन सबका एक अलग धार्मिक महत्व भी है। जैसे कोई भी पेड़ हो, मान लीजिए नीम का ही पेड़ हो, अगर उस पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि चुनरी थोड़ा सा बांध देते हैं तो वो पूजा पाठ का केंद्र बन जाता है। और नीम जो है वो हमें अनेक प्रकार के रोगों को रोकने में कारगर भी होता है, जैसे हमारी त्वचा के बहुत सारे रोग होते हैं। चैत्र मास में हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि अगर नीम के पानी से स्नान हो जाए, नीम की जो पतली पतली नई नई कोपलें आती हैं उनका सेवन हो तो साल भर हमें फोड़े फुंसी बुखार ये सब नहीं होते। बिल्कुल, नीम का जो है पेड़ वो हमारे सांस्कृतिक महत्व से हमारे गीत संगीत से भी जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि माता नीम के पेड़ पे बैठ के हिंडोला यानी झूला जो है वो झूलती हैं अगर आप कहें तो इसका एक बहुत प्रचलित गीत है, माता का पछड़ा।

0: टीकावात और यही तरह से स्थापित करके कि देवी मैया का इमन वास है ओके बचावल जाला काटे से रोकल जाला।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल। और सिर्फ नीम ही नहीं, ये अन्य भी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पीपल है, आप देखी होंगी कि घरों पे ऊपर बालकनी में कहीं पे छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो उग जाते हैं, लेकिन उनको काटने का निषेध है और वो कार्य माली को ही जो है वो दिया गया है कि मुखिया जो है घर का आदमी कोई जो है वो काटेगा नहीं, हर दिन इतवार को जो है वो काटेंगे नहीं, मंगलवार को नहीं, इसका एक प्रमुख दिन बनाया गया। और हमारा पीपल का जो पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ऐसे ही हमारा बरगद का पेड़ भी है जो कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, जो हमारी विशालता और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत तो एक धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं उस पेड़ के चारों ओर एक सूत जो है लेके घूमती हैं, गीत भी मंगल गीत जो है वो गाती रहती हैं, श्लोक गाती रहती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत पूजन जो होता है वो करती हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे जो है वो बचे रहते हैं।
0: बिल्कुल सही बात
1: जी
0: कहते हैं। और ये आस्था इतना प्रगाढ़ होला बहनी लोगन का कि उनके भाई मानता रहेला ना तो ई देव समान जो वृक्ष होलन उनके मनसा के पूरा भी करेलन।
1: और इसके साथ में उन पेड़ों से छाव तो मिलती ही है, लेकिन साथ में जो औषधि या गुण है उसके, जैसे बरगद का दूध है, छाल है, पत्ते हैं, जो दाद खाद खुजली और दांतों और मसूड़ों की समस्या, सूजन दस्त, इन सब के इलाज में बहुत काम आते हैं। इसके साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत सहायक होते हैं। जो कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, हम बहुत तुरंत तुरंत वायरल हो जाता है, मौसम के प्रभाव से हम सभी प्रभावित हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। और इसकी छाल जो है वो शुगर यानी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी बहुत कारगर होता
0: का
1: है।
0: बात था देखी ने इतना जानकारी के बात आप बहनी लोगन के बतावत थी ना। बहनी लोगन भी पहले से बहुत कुछ जानत थी लेकिन ये दिशा में केहू जागरूक नहीं होता और पेड़ कटल जाए।
1: और पेड़ों के काटने से क्या है, हमारे जो जानवर हैं, कीट है, पतंगे हैं, जब छोटे थे हम लोग तो अनेक प्रकार की ये चिड़ियां हैं और ये सब हमें पेड़ों पे घोंसलों में दिख जाते थे। अब इतने पेड़ बचे हैं ही नहीं कि वो सब देखने को मिले। तो इस तरीके से अगर पारिस्थितिक महत्व की बात करें तो इस प्रकार के छायादार पेड़ न सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए बल्कि हमारे धरोहर के रूप में भी काम आते हैं।
0: सही बात कहते हैं। और हम लोगों ने के संरक्षित करे का बात कर रही थी तो पहले ई जानल भी बहुत जरूरी है कि ई प्रदूषित काहे होता।
1: सबसे पहले कि जैसे जैसे हम मानव लोग विकास की एक अंधी दौड़ में बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम अपना विकास करेंगे, तो विकास के नाम पे हम बहुत सारा प्रकृति का दोहन भी जो है वो हो रहा है, जैसे कि वायु प्रदूषण है, धुआं है, हानिकारक गैसें हैं, धूल के कण हैं, कारखानों से चिमनी से उठता हुआ जो धुआं है, कचरे को जलाने से जो धुआं होता है, ये सब वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है। साथ में जल प्रदूषण है, जैसे कारखानों के रसायनों, सीवेज और प्लास्टिक के जल निकायों में मिलने से इस प्रकार का प्रदूषण होता है और इससे पीने वाला जो पानी है वो धीरे धीरे जहरीला बन जाता है। फिर ध्वनि प्रदूषण है, जैसे तेज वाहन है, लाउड स्पीकर है, आजकल आपने देखा होगा कि शादियों में तेज तेज डीजे जो है वो बजता है, जिससे बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं लोग, तो उसका तेज ध्वनि इस प्रकार से भी प्रदूषण। मिट्टी का, जब खाते हैं हम अनाज और अगर हमारी मिट्टी ही प्रदूषित हो जाएगी तो खाने के लिए हमें शुद्ध अनाज मिलेगा नहीं, जिससे कुपोषण जो है वो धीरे धीरे समाज में बढ़ता जाएगा और अनेक प्रकार के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में और जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको डालने से मिट्टी हमारी खराब होती है, अनाज भी खराब होता है और इन दोनों के खराब होने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: होता भाई आजकल देखी नहीं।

0: इतना तरह का बीमारी निकल गई है जेकर मने ही जानत भी ना रहे कि ई बीमारी का होला।
1: और इसके अलावा प्लास्टिक सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है, क्योंकि प्लास्टिक पिघलता नहीं है, वेस्ट होता नहीं है, और नष्ट न होने के कारण ये कई वर्षों तक वो पड़ा रहता है और धीरे धीरे हमारी मिट्टी को जो है वो प्रदूषित करता है। तापीय प्रदूषण है, और उसके बाद हमारा रेडियो धर्मी प्रदूषण भी है। जैसे हमारे यहाँ हर देश अपना परमाणु जो है संयंत्र स्थापित करने की होड़ में है, तो उससे भी है ये ध्वनियां होती हैं, जो केमिकल होते हैं, तो वो भी पर्यावरण के प्रदूषण का कारण है।
0: अब जब कारण पूछ ले ली है हमन, तो इहो जानल जरूरी है कि के बचावल कैसे जाए, कर सुरक्षा कैसे करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली बात तो प्लास्टिक से परहेज करें, पानी जो है उसको बचाएं, वर्षा के जल का संचयन

0: करें, पानी जो है उसको बचाएं, वर्षा के जल का संचयन करें, पेड़ जो है हर रोज लगाएं, जैसा कि एमपी गवर्नमेंट में है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो इसी प्रकार एक एक पेड़ जो है लगता रहेगा। ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का समर्थन, जैसे कि सोलर बिजली को ये बढ़ावा देना, आजकल गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए सब्सिडी भी सबको प्रदान करती है। जी, साथ में परिवहन जो है, जैसे हमारी गाड़ी है, मोटर है, कार है, इनके स्थान पे साइकिल का प्रयोग करें, नदी तालाब कुओं का बचाव करें और उन्हें स्वच्छ रखें, तेज हॉर्न से परहेज करें, सामुदायिक सफाई अभियानों में भाग लें और पर्यावरण के बारे में ना सिर्फ खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक।
1: ये बताएं कि ऐसे हमन का स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता?
0: हमारा जो स्वास्थ्य है ये असल में एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है, हवा पानी मिट्टी, वो जितना शुद्ध होगा हमारा स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। प्रदूषित हवा है, सांस की ये प्रॉब्लम हमें होती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, साइनस है, फेफड़ों में कैंसर है, इस प्रकार की बीमारियां जो है। ध्वनि जनित रोग जो है, जैसे मानसिक अवसाद है, छिड़छिड़ापन है, पागलपन है, अनिद्रा है, माइग्रेन है, मिट्टी और पानी में मौजूद जो रासायनिक प्रदूषण, जैसे कि पारा है, सीसा है, कैडमियम है, इस प्रकार जो ये पदार्थ हैं वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं।
1: अच्छा, सरकार इस दिशा में कौन कदम उठा?
0: अगर सरकारी योजनाओं की बात करें, हमारी भारत सरकार भी इस प्रकार की योजनाओं को लेके बहुत सजग है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी भी है, नमस्ते योजना, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता कार्य योजना, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, नमामि गंगे, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और हर रोज कुछ न कुछ नया जो है सरकार हमारी कर रही है, जिससे प्रकृति का संरक्षण बना रहे।
1: बहुत निक लगल और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियन के संगे आप हमरे बीच में आए लेन। चलत चलत बहन लोगन बदे पर्यावरण से जुड़ल अगर कोनो गीत हो तो उ सुना देती तो बड़ा बढ़िया रही।
0: जैसा कि चूंकि वाराणसी में है हम और तो वाराणसी हमारा गंगा के तट पे है, तो गंगा जी को उनके जल को संरक्षित करने का एक गीत मुझे समय स्मरण में आ रहा है।
1: बताएं।
0: हौले हौले मनवा डोले, हौले हौले मनवा डोले, हो के हूँ गंगा के।

0: क्या बात है, बहुत नीक रहल है। और ये माध्यम से सबके संदेश मिलत है कि कौने तरह से हम लोगन के अपने गंगा मैया के भी स्वच्छ रखे के चाहिए, पर्यावरण के स्वच्छ रखे के चाहिए। तो डॉक्टर श्रुति उपाध्याय जी, आप हमारे कार्यक्रम में लीन, और पर्यावरण संरक्षित करके कैसे अपने स्वास्थ्य के सुधारल जा सकेला, स्वस्थ रहल जा सकेला, ये विषय पर इतना नीक नीक इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देलिन। ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चंपा,
0: हाँ
1: इतना
0: जी,
1: नीक, इतना बढ़िया, इतना फरिया के जौन है डॉक्टर श्रुति शाश्वत उपाध्याय जी जौन है बतकही में बतैनी है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करे के चाहिए और एकर हमन के स्वास्थ्य पर अच्छा बुरा का प्रभाव पड़त है ना।
0: हाँ
1: बतकही करत रहनी है शिखा श्रीवास्तव बहिन। और हम कही ना कि देखा जौन ये बात होत है कि पेड़ पौधा हमन के जिंदगी में का महत्व रखला ना, तो आज खास दिन हो बहिन लोगन सुलहो श्रृंगार कह कह के पूजा पाठ करत हैं, तो काहे ना अपने कार्यक्रम में भी हम लोग भी जौन यही कामना के साथ बहिन लोगन के सुनावत है जा ई गीत बहिन लोगन सुने।
0: सुनवाई दे।

0: दीदी देखा सबका सौभाग्य बनल रहे, यही पर देखा कितना निक गीत सुनवा दिली है ना। आप देखली झूमता रहली ना, बहनी लोगन भी झूमता रहली ना।
1: सब झूमत लो भाई, गीत
0: हाँ
1: ऐसा हो वही के चाही सबकर जो ना कि सौभाग्य बनल रहा है ना।
0: तो आज का पिटारी में ले आयल हो?
1: पिटारी में ताकल झाकल करलो कि का लेके चलली, खाए पिए वाला चीज पे तोहार बड़ी जल्दी नजर जाला। तो देखा भाई मौसम चला था गर्मी का, आ
0: बिल्कुल,
1: एक गर्मी में देखा अपने गांव गिराव में बाग बगीचा में काम दिखा था तुमके।
0: ये समय आमा तो दिखा
1: हाँ
0: था
1: देखा खाए पिए वाली चीज तो बड़ी ध्यान दे वाली था।
0: देवी।
1: आम का तो बात करत ही जा, तो देखा सीधे मन जाला कि काहे न जौन है कि पन्ना पियल जाओ है ना। गर्मी में पन्ना पीला तो शरीर के देखा ठंडाई मिल जाला। तो बनाना भी बड़ी आसान है चंपा, बस
0: हाँ
1: करे की है कि 3-4 ठे आम लेला और
0: हाँ
1: के बढ़िया से भूज ला, और ना भूज सकत हूँ तो उबाल ला। और फिर एमन जौन है ना एक पुदीना ले ला, ओके पीस ला बढ़िया सा। काला नमक लेला और 1 चम्मच जीरा लेला, ओके भूज के बढ़िया से पीस ला। 1 ठे निबुआ लेला और थोड़ी से स्वाद बनावा खातिन चीनी लेला है ना। अब
0: हाँ
1: एक एक का करे के है तुमके, बस भुजले के बाद आम के छील ला, ओकर गुद्दा बढ़िया से मल ला। मसलले के बाद 2 से 3 गिलास पानी में मिलावा, और मन जितना भी सब सामान है पुदीना हो काला नमक हो भुजल जीरा हो हाँ एके मिला ला। फिर ओमन नींबू निचोड़ा आ सबके जौन है कि पियावा। देखा आम का पन्ना तैयार है, प्रयास करा कि गगरी के पानी में बनावा था और पौष्टिकता बढ़ जाई।
0: आ देखा ऐसे लाभ का होला बताई हम, लू से बचाव रखला, शरीर के ठंडा रखेला, शरीर में पानी की कमी के पूरा करेला, आ कब्ज से भी दूर करे रखेला, आ थकान भी दूर रखेला।
1: हाँ और सबसे बड़ी बात कि मन विटामिन सी और आयरन भी मिलेला, यानी कुल मिला के ही कच्चा आम जो ना मौसम के फल हो। एके चाहे कच्चा खा, चाहे तू भूज के खा, चाहे पन्ना बना के खा, जैसे भी खा, हर तरह से तुम्हारे स्वास्थ्य खातिन ये जो ना पोषण प्रदान करी। और बतकही करत करत अब बहिन लोगन से विदा लेवे का समय हो गल चंपा, तो
0: हाँ
1: चलल जा।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार है गीतांजलि मौर्य। सबसे पहले गीतांजलि मौर्य के स्वर में आइए सुनते हैं ये लचारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गीतांजलि मौर्या के गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे लचारी। अब आइए सुनते हैं इनका गाया निर्गुण गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं।

0: एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलू ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: इफ यू हर्ड मी अर्लियर,
5: अगर आपने मुझे पहले

0: सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए

0: लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी कायनात का रहस्य छुपा हुआ है। जन्म देने वाली, प्यार करने वाली, पाल पोसकर बड़ा करने वाली, उम्र भर निस्वार्थ प्रेम करने वाली, पूरी दुनिया से अलग प्यार करने वाली, हमारी हर कमियों को पूरा करने वाली सिर्फ माँ होती है। माँ के लिए उसके बच्चे उसकी जिंदगी होते हैं। वो अपने बच्चों की हर खुशी का ख्याल रखती है और उनको खुश करने के लिए हर कोशिश करती है।

श्रोताओं, माँ को ना सब पता होता है। हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा हमारी माँ को होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, तो कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी माँ बोल देती है। लेकिन फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छिपा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है।

माँ और उसके बच्चों के बीच एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक रिश्ता होता है। ये रिश्ता प्रेम, प्यार, दुलार, गुस्सा, नोकझोंक, त्याग, बलिदान और भी न जाने कितने भावों को अपने में समेटे हुए होता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ की ममता कभी भी कम नहीं होती। दूर रहकर भी वो हमेशा अपने बच्चों के पास ही रहती है। बच्चों की खुशी के लिए माँ हर मुसीबत को पार कर जाती है। ये एक माँ का प्रेम ही तो है जो अपने बच्चे की हर मुसीबत में ढाल बनकर आगे आ जाती है। चाहे बच्चा कितना ही कुरूप हो, पर वो सदा अपनी माँ की आंखों का तारा ही होता है और वो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। माँ है तो हम हैं। माँ के बिना हम कुछ भी नहीं। ईश्वर ने माँ के रूप में हमें अपना रूप दिया है।

माँ का रिश्ता दिल का रिश्ता है। दर्द का संबंध ही तो है जो माँ को बाकी रिश्तों से अलग रखता है। माँ का प्यार ही तो है जो ईंट मिट्टी के मकान को भी घर बनाता है। वह स्नेह, वह प्यार, वह दुलार घर की रग रग में बस जाता है। श्री ओम व्यास के शब्दों में कहूँ तो माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। दोस्तों, माँ भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफा है। बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें माँ का प्यार नसीब होता है। माँ और बच्चे के रिश्ते को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और ना ही मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने शब्द ही नहीं है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ ही कर जाती है। माँ की जैसा प्यार दुलार और माँ की जैसा सेक्रीफाइस शायद ही कोई कर पाए। श्रोताओं, माँ के इस अनोखे रिश्ते को ना हम सभी को हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। एक माँ ही है जो हमें हमारी हर कमियों के साथ अपनाती है, इसीलिए इस खास रिश्ते को हम सभी को संभाल के रखना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए। आज की हमारी गीतांजलि बस इतनी ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DRM 1233 किलो हर्ट्स, DTH न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की संध्याकालीन सभा।

0: बच्चों
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।
1: जय हिंद मंजरी दीदी।
0: जय हिंद सुखदा दीदी, कैसी हैं आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ।
0: और नन्हे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। क्या है ना कि जैसे दीदी, घर में क्या होता है कि हमारे नन्हे साथी खेलते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं। मम्मी एक गिलास पानी दे दो, मम्मी ये दे दो, दीदी ये दे दो, मतलब वो खुद से उठना ही नहीं चाहते हैं, है ना?
1: मतलब अपने मम्मी पापा के ऊपर या फिर अपने बड़े
0: हाँ
1: भाई बहन के ऊपर निर्भर करते हैं कि कोई मुझे ये लाके दे दो। बल्कि जिसे कहते हैं कि बच्चे तो चुलबुले होते हैं, थोड़ा फुर्तीले भी होते हैं, तो
0: जी
1: खुद अपना काम कर सकते
0: हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब वो लेजी हो जाएंगे और बिल्कुल बिस्तर या सोफा
1: हैं।
0: छोड़ेंगे ही नहीं, तो ऐसा कैसे होगा? और सिर्फ पानी या किसी खाने की बात नहीं है, वो हर काम, जैसे मेरी किताब कहाँ है, मेरे शूज कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, कुछ भी हो। और कुछ कुछ ना दीदी, बच्चे तो मैंने देखा है कि वो खाना भी खुद से नहीं खाना चाहते, वो मोबाइल पे लगे हैं और मम्मी उनको मतलब एक एक बाइट उनको खिला रही है। ऐसे
1: बिल्कुल
0: भी बच्चे होते हैं।
1: बिल्कुल। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने काम आपको स्वयं करने हैं। और बच्चों आप अपनी उम्र के हिसाब से घर का कोई भी छोटा बड़ा काम कर
0: जी
1: सकते हैं,
0: जी
1: है ना। इससे आप अपने निर्णय लेना भी सीख सकते हैं।
0: और अपने छोटे काम खुद करने से आप अपने मम्मी पापा और भाई बहनों की हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जब आप अपने काम स्वयं से करते हैं ना, तो एक आत्मविश्वास भी अंदर से आता है और जिम्मेदारी वाली जो भावना होती है ना, वो धीरे धीरे उसकी नींव आ जाती है। आप पहले अपने आप के लिए जिम्मेदार बनते हैं, फिर आप अपनी जिम्मेदारी अपने बड़े भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर के लिए, अपने विद्यालय के लिए भी समझने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए सही है या जो मेरे घर वालों के लिए, मेरे विद्यालय के लिए सही है।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। और दीदी जैसे हम अपने बच्चों को कुछ नया करने की सिखा ही रहे हैं, तो किचन में मम्मी की हेल्प भी कर सकते हैं।
0: जी
1: जो भी सामान आप इधर उधर बिखरे पड़े हुए देख रहे हो वो समेट सकते हैं। वैसे दीदी बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खेलते खेलते अपने खिलौने इधर उधर फेंक देते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं कि मेरा खिलौना कहाँ गया। तो अगर बच्चों आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो ऐसा मत कीजिए। अपने सामान को, अपने खिलौनों को, अपनी किताबों को, जो भी आपकी चीजें हैं उनको सही जगह पर रख दीजिए, जिससे बाद में आपको वो सामान आसानी से मिल जाए, है
0: और
1: ना
0: अगर आपको
1: दीदी।
0: ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं

0: समझ में आ रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपने शूज खुद से उतार लीजिए, और आपको ये तो पता ही है कि मम्मी शूज कहाँ रखती हैं, तो उठा के वहीं पे रख दीजिए। अपने बैग में से अगर किताब कॉपी निकालें तो अपने बैग में कैसे रखना है ये तो आपको भी पता है, आप वहीं रख लें। खाना अगर आके रख जाए तो किसी को बुलाने के बजाय खुद से उसको खा लें, पानी पी लें, या अगर कुछ थोड़ा बहुत टूट फूट गया है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, या आपने मान लीजिए कागज फाड़ के फेंक दिया जमीन पे, तो उसको जमीन पे ना फेंक के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो ये छोटे मोटे काम तो आप कर ही सकते हैं, और इतना तो करना भी चाहिए, तभी तो जिम्मेदार बनेंगे।
1: और दीदी आपने जैसे खाने की बात की, तो मैं यही कहूंगी बच्चों को कि बच्चों देखिए गर्मी बहुत बढ़ रही है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप संतुलित आहार लें, घर का बना हुआ ही भोजन लें, बल्कि बाहर के खाने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और बच्चों संतुलित आहार लेना, कपड़े ठीक से पहनना, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, और अपनी जरूरतों को और अपने सामान का ध्यान रखना, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये आनी चाहिए।
0: बिल्कुल दीदी, तो ये तो रही हमारे साथियों को थोड़ा सा जिम्मेदार बनाने की बात। और अब कार्यक्रम में एक बहुत ही रोचक सा, अरे रोचक बोले से आप तो समझ ही गई होंगी मैंने तो सस्पेंस ही खोल दिया, रोचक बोल दिया, मतलब मेरे साथी भी समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। तो कोई सस्पेंस नहीं है, रोचक दीदी तो आती ही है और बहुत सारी रोचक जानकारियां भी लाती हैं। तो इस बार हम देखते हैं कि वो क्या नई रोचक जानकारी लाई साथियों। तो आइए सुनते हैं रोचक दीदी की रोचक जानकारी।
2: बच्चों नमस्ते, आ गई है रोचक दीदी फिर एक बार लेकर जानकारियों का पिटारा। ये आवाज सुनी आपने? ये घंटी की आवाज किसकी है? ये आवाज पहचानिए पहचानिए तो। ये है आपकी हमारी प्यारी साइकिल की घंटी। बच्चों हम सभी को साइकिल चलाना बड़ा अच्छा लगता है ना? तीन पहिया साइकिल हो या दो पहिया, छोटी हो या बड़ी, गियर वाली हो या बिना गियर वाली, हम सभी को बड़ी प्यारी लगती है अपनी साइकिल। सरपट दौड़ती ये हमारी साइकिल जब हवा से बातें करती है तो यूं लगता है मानो हमें पंख लग गए हैं। वैसे बच्चों ये सामान्य से दिखने वाली हमारी साइकिल आज हमें जैसी दिखती है ये पहले ऐसी नहीं थी। कई लोगों के प्रयासों के बाद समय के साथ साइकिल के डिजाइन्स में कई सारे बदलाव किए गए, तब कहीं जाकर आज हम जो साइकिल चलाते हैं ये साइकिल बनी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुरुआती दौर में साइकिल जो थी लकड़ी की हुआ करती थी और इसमें पैडल भी नहीं होते थे। बताइए लकड़ी की साइकिल बिना पैडल वाली तो फिर ये चलती कैसे थी? अरे पैरों से ढकेल कर चलाना पड़ता था इसे। उफ बाप रे, अच्छी खासी कसरत हो जाती होगी चलाने वाले की। और इसे क्या कहा जाता था बताऊं? इसे कहा जाता था काठ का घोड़ा है ना मजेदार। और धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ और फिर बनी पैडल वाली साइकिल। वैसे साइकिल के डिजाइन्स में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। ऐसी भी साइकिल थी जिसके आगे के जो पहिए थे वो पीछे के पहियों से बहुत बड़े होते थे, अब पीछे के पहिए छोटे आगे के पहिए बड़े। सोचिए जरा, ऐसी साइकिल पर एक स्टैंड के सहारे उछल कर बैठना पड़ता था और चलाते समय आगे अगर कोई रुकावट आ जाए तो ब्रेक लगाने पर चालक जो था गिर जाता था। और सबसे कठिन काम जो था वो था ऐसी साइकिल से नीचे उतरना। तो भाई आज की जो हमारी साइकिल है जिसे आप हम सरपट दौड़ाते हैं, जिसे आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और तो और बच्चों साइकिल चलाने से सेहत भी अच्छी रहती है। तो जब भी आपको समय मिले खेल कूद के लिए तो मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ा सा दूर हटिए, बाहर निकलिए अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों के साथ, बड़ा मजा आएगा। फिलहाल मैं अपनी साइकिल लेकर जा रही हूँ, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तो रोचक दीदी कहती है आप सभी बच्चों से बाय बाय।
1: भाई वाह दीदी, हमारी रोचक

0: दीदी ने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है, लेकिन एक बात बताओ, हमारे
1: जी
0: बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दीदी लोगों ने हमें इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें सिखा दी, इतनी सारी जानकारियां दे दी, लेकिन हमारा मनोरंजन नहीं
1: दीदी, मैं
0: किया।
1: आपका इशारा समझ रही हूँ। अरे भाई, हम सबका ख्याल रखते हैं। अगर हमारा काम बच्चों को सिखाना है तो उनका मनोरंजन का ध्यान भी तो हम ही रखेंगे ना। कार्यक्रम में आपका मनोरंजन करेंगे इस गीत के माध्यम से।

0: गीत सुन के तो मुझे बहुत ही आनंद आया और मैं तो खुशी से झूम भी रही थी। मुझे लग रहा था कि वह बजता ही रहे और मैं नाचती ही रहूं।
1: हाँ दीदी बिल्कुल, हम सभी में भी तो कहीं ना कहीं एक बच्चा ही है, बच्चे से ही तो बड़े हुए हैं, तो वो अंदर का बच्चा, जब बच्चों के लिए संगत मिलती है तो अंदर का बच्चा बाहर आ ही जाता है। और अब दीदी हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, चलने का समय भी हो गया है,
0: लेकिन दीदी
1: जाने
0: देखिए,
1: से पहले कुछ जरूरी बात तो हम हमेशा बताते ही हैं, तो आज हम क्या बताएंगे?
0: दीदी जैसे गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़
1: हाँ
0: रही है
1: आपने
0: ना।
1: गर्मी की बात करी, तो ये गर्मी हमें इतनी अगर लग रही है तो जो सिर्फ पर्यावरण में हम तो है नहीं, बहुत सारे जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो इन सब का भी ख्याल रखें। और खासकर पशु पक्षी जो कि बिल्कुल बेजुबान होते हैं, उनकी कोई उनकी तकलीफ, जैसे पेड़ तो सूख गया तो आप समझ जाएंगे कि इसको पानी दे दो, लेकिन उनको तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखें और कम से कम एक कटोरे में अपने छत पे पानी जरूर रखें।
0: कुछ चावल के दाने भी
1: जी
0: बिखेर दें,
1: जी
0: है ना दीदी। और देखिए इतनी धूप है
1: जी
0: कि हम लोग धूप में नहीं खड़े हो सकते। कोई इंसान को इतनी गर्मी लग रही
1: जी
0: है तो
1: बिल्कुल
0: सोचिए वो बेचारे बेजुबान जानवर जो दिन भर धूप में खड़े रहते हैं उनको कितनी गर्मी लगती होगी। तो जरूरी है कि उनको भी छायादार जगह पे ही उनको रखा जाए और पीने के लिए पानी दिया जाए,
1: जी
0: समय समय पर उनको चारा वगैरह दिया जाए।
1: कहने का मतलब कुल मिला के ऐसा कर सकते हैं कि हमारे छत पे, हमारे बालकनी में जो थोड़ी खुली जगह होती है ना, तो थोड़ा सा शेड टाइप का कुछ अरेंज कर सकते हैं टेम्परेरी, कि अगर वो चाहें तो वहां थोड़ी देर बैठ के उनको छाया मिल जाए। पेड़ पौधे तो अब कम ही हो गए हैं, पेड़ पौधे भी हम लगा सकते हैं, वो भी उनके लिए अच्छा होगा। और दूसरा कि थोड़ा सा चारा, यानी कि जैसे दीदी ने कहा थोड़ा चावल डाल दें या घर में कोई और भी अनाज है, और पानी जरूर रखते।
0: तो आज दीदी हमने अपने बच्चों से बहुत सारी बातें कर ली
1: जी
0: हैं, लेकिन देखिए ना घड़ी बोल रही है कि दीदी लोगों बस
1: हाँ
0: कीजिए, है ना। तो घड़ी की सुइयां भी अब इशारा कर रही हैं। तो अपने बच्चों से हम फिर मिलेंगे। अब दीजिए हमें अनुमति। बच्चों
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
1: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंद कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आलिया
0: और मैं हूँ नेहा। आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों,
1: और दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लें ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 0542227658।
3: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
6: दोस्तों, आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रकाश के महत्व, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और मानव जीवन में उसके योगदान को समझाने के लिए मनाया जाता है।
7: दोस्तों, यूनेस्को ने इस दिवस की शुरुआत की थी और प्रकाश केवल हमारे आसपास उजाला फैलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण के विकास का आधार भी है। यदि प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है।
6: दोस्तों, प्रकाश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है। सूर्य के प्रकाश से पौधे भोजन बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसी प्रक्रिया से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दोस्तों, अंधकार निराशा का प्रतीक माना जाता है, जबकि प्रकाश आशा, ज्ञान और प्रगति का प्रतीक है।
7: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाने का उद्देश्य

0: लोगों को यह बताना है कि प्रकाश विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सौर ऊर्जा, एलईडी बल्ब और चिकित्सा उपकरणों में प्रकाश का व्यापक उपयोग हो रहा है। इंटरनेट और संचार व्यवस्था में भी प्रकाश की अहम भूमिका है।
1: फाइबर ऑप्टिक तकनीक के माध्यम से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान संभव हुआ है। अस्पतालों में लेजर तकनीक द्वारा कई जटिल ऑपरेशन आसानी से किए जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रकाश विज्ञान मानव जीवन को सरल और सुरक्षित बना रहा है।
0: प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह सूर्य का प्रकाश हमें नई ऊर्जा और उत्साह देता है। प्राकृतिक प्रकाश से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का प्रकाश शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं।
1: इसके अलावा प्रकाश के बिना हम कोई कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई, लेखन, यात्रा, खेती, उद्योग और घरेलू कार्य, दोस्तों हर क्षेत्र में प्रकाश की आवश्यकता होती ही है।
0: दोस्तों, प्रकाश पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। आज पूरी दुनिया ऊर्जा बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने पर जोर दे रही है। एलईडी बल्ब सामान्य बल्बों की तुलना में कम बिजली खर्च करते हैं और अधिक प्रकाश देते हैं। इससे ऊर्जा की बचत होती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। हमें अनावश्यक बिजली कभी खर्च नहीं करनी चाहिए और प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए।
1: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए।
0: और दोस्तों, इसी के साथ हम आज मना रहे हैं सिक्किम डे। सिक्किम दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है और ये दिन सिक्किम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इस अवसर पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहता है।
1: लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड, लोक नृत्य और विभिन्न समारोहों के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। सिक्किम दिवस केवल एक राजनीतिक घटना की याद नहीं है, बल्कि यह राज्य की संस्कृति, परंपरा, एकता और विकास का प्रतीक भी है।
0: दोस्तों, सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर राज्य है। इसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो पर्यटन का मुख्य केंद्र मानी जाती है।
1: सिक्किम का इतिहास बहुत रोचक है। पहले यह एक स्वतंत्र राजशाही हुआ करता था। यहाँ चोग्याल नामक राजाओं का शासन चलता था। सिक्किम में मुख्य रूप से लेप्चा, भूटिया और नेपाली समुदाय के लोग निवास करते हैं। इन सभी समुदाय ने मिलकर राज्य की समृद्ध संस्कृति को विकसित किया। यहाँ की भाषा, पहनावा, खान पान और त्यौहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं।
0: भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम एक संरक्षित राज्य के रूप में भारत से जुड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने लोकतांत्रिक शासन की मांग शुरू की और जनता चाहती थी कि सिक्किम भी भारत का पूर्ण राज्य बने, ताकि उन्हें समान अधिकार और विकास के अवसर प्राप्त हो सकें।
1: वर्ष 1975 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने भारत में विलय का समर्थन किया। इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का राज्य बन गया। तभी से हर साल इस दिन को सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने पारंपरिक वस्त्र पहनकर लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम की प्रसिद्ध लोक कलाएं और संगीत इस दिन विशेष आकर्षण का केंद्र बनती हैं। सरकारी भवनों और सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी और झंडों से सजाया जाता है।
0: दोस्तों, सिक्किम अपनी जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं और दोस्तों, सिक्किम की स्वच्छता और हरियाली पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है।
1: पर्यटन की दृष्टि से भी सिक्किम का विशेष महत्व है। यहाँ स्थित कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है, जिससे लोग श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा नाथुला दर्रा, युमथांग घाटी और कई बौद्ध मठ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हर वर्ष हजारों देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने भी आते हैं।
0: दोस्तों, सिक्किम की संस्कृति में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ अनेक प्राचीन मठ और धार्मिक स्थल हैं।

0: लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन बिताते हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसे लोसार, सागा दावा और दशैं राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।
1: दोस्तों, यह दिन हमें अपने देश की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। सिक्किम ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
0: इसी के साथ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता और एकता की भावना को बढ़ावा देना है।
1: आज के समय में जब समाज में जाति, धर्म, भाषा, रंग और विचारों के आधार पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, तब यह दिवस हमें मिलजुल कर रहने और शांति बनाए रखने का संदेश देता है।
0: दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई ताकि सभी देशों के लोग आपसी मतभेद को भुलाकर मानवता और शांति के मार्ग पर चल सकें।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, समाज में रहकर ही उसका विकास संभव है। यदि समाज में शांति और सद्भाव न हो तो जीवन कठिन हो जाता है। शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सम्मान, सहयोग और विश्वास की भावना का नाम भी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों अब वक्त है कल के प्रश्न और उसका सही जवाब जानने का। तो हमने कल आपसे प्रश्न किया था कि आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है, और दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। और हमारे कल के जवाब का सही उत्तर देकर विनर्स बने हैं
1: मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, चंदा चंदौली ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और राज सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा, प्रावीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से।
0: आप सभी दोस्तों को हमारी युवाणी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब सुन लीजिए हमारा आज का प्रश्न।
1: दोस्तों, हमारा आपसे आज का प्रश्न है ये, आकाशवाणी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, आकाशवाणी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो फटाफट से भेजिए अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टा हैंडल youth_AIR वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए youth_AIR_VNS@gmail.com पर।
0: और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी का यह सफर 90 वर्षों का होने वाला है, और इस खास मौके पर हमारी टीम ने विद्या विहार इंटर कॉलेज एंड स्कूल, मॉडल स्कूल सलारपुर वाराणसी के बच्चों के बीच क्विज कॉन्टेस्ट कराया। तो आइए सुने क्विज, जिसका संचालन किया है नेहा श्रीवास्तवा और दिव्या मित्तल ने, और प्रस्तुति है आशुतोष कुमार की।

0: कभी रेडियो की मधुर आवाज से तो कभी ज्ञान और जानकारी के अनगिनत कार्यक्रमों से, एक ऐसा माध्यम जिसने पीढ़ियों को जोड़े रखा, जिसने आवाज की दुनिया में एक नायाब रिश्ते की डोर को बनाया।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी आकाशवाणी की, जिसने पिछले 90 वर्षों से देश की संस्कृति, शिक्षा, संगीत और जन जागरूकता को घर घर तक पहुँचाया है।
0: और आकाशवाणी के इस गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आयोजित की जा रही है एक विशेष विद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता। और आज इसका आयोजन विद्या विहार इंटर कॉलेज एवं मॉडल स्कूल के परिसर में किया गया है,
1: ताकि नई पीढ़ी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और जागरूकता से भी जुड़ सके। तो दोस्तों, मैं हूँ दिव्या।
0: और मैं हूँ नेहा।
1: आप सभी को हम दोनों का नमस्कार।
0: तो दोस्तों, हम आपका इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: और आज की इस प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय विद्या विहार इंटर कॉलेज एवं मॉडल स्कूल की प्रतिभाशाली टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का। तो सभी टीम्स पहले बारी बारी अपना परिचय देंगी। तो सबसे पहले टीम आर्यभट्ट।
2: माय नेम इज नक्षी मौर्य, क्लास 8।
3: माय नेम इज रितिका कुशंती फ्रॉम क्लास 9।
4: माय नेम इज समा जसवाल, आई इन क्लास 10th।

0: यूरा सैनी फ्रॉम क्लास 10।
1: माय नेम इज शिवान जसवाल फ्रॉम क्लास 8।
2: अब बारी है टीम रमन की।
3: आई एम ऋषि फ्रॉम क्लास 8।
4: माय नेम इज श्रेया तिवारी फ्रॉम क्लास 9।
5: आई एम नितिका गुप्ता फ्रॉम क्लास 10।
6: आई एम गजानन सिंह चौहान फ्रॉम क्लास 8।
7: माय संतोष सर फ्रॉम क्लास 10।
2: अब बारी है टीम सी यानी शिवाजी टीम की।
8: माय सेल्फ सौरभ गुप्ता फ्रॉम क्लास 9।
9: माय नेम इज रोशनी राय स्टूडेंट क्लास 8।
10: माय नेम इज करिश्मा कुमारी फ्रॉम क्लास 8।
11: माय नेम इज यशवी गुप्ता आई एम फ्रॉम क्लास 10।

0: आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, यानी ऑप्शंस का भी मौका है। जिसका भी आंसर सही होगा, सही जवाब को 5 मार्क्स यानी 5 पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
1: और उसके बाद आएगा दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में भी आपसे टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको, लेकिन यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। और इस राउंड में भी आपको हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे।
0: तो दोनों राउंड आपने समझ लिया। अब चलिए राउंड 3 की बात करते हैं। अब हमारा जो तीसरा राउंड है उसमें कुल आपसे 5 प्रश्न होंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपसे सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और टीम्स को बजर दबाकर उत्तर देना होगा। जो टीम सबसे पहले बजर दबाएगी उसे उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि कौन सा उत्तर आपको आ रहा है और उसके साथ में जल्दी बजर दबाना है, ठीक है। और जो भी टीम सही उत्तर देगी उसको 10 अंक यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस और रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्या आप सभी तैयार हैं इस एक्साइटिंग क्विज जर्नी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों की जर्नी के सेलिब्रेशन में इस स्पेशल क्विज कंपटीशन को
1: पार्टिसिपेंट्स, अब समय आ गया है फर्स्ट राउंड यानी कि ऑप्शन राउंड का। इस राउंड में हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको बस एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आंसर देना है।
0: कुछ क्वेश्चंस होंगे इजी पीजी और कुछ थोड़े नॉलेज बेस्ड भी होंगे, मतलब आसान भी होगा और थोड़ा मुश्किल, दोनों चीजें, ताकि कॉम्पिटिशन और भी इंटरेस्टिंग और रोचक बन सके।
1: सो टीम्स बी रेडी, लेट्स बिगिन द ऑप्शन राउंड। हमारा पहला सवाल टीम आर्यभट्ट से।
0: टीम आर्यभट्ट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा का राष्ट्रीय नाम क्या है? व्हाट इज द नेशनल नेम ऑफ अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन इंडिया? नाउ लिसन द ऑप्शंस केयरफुली। ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑप्शन बी आकाशवाणी, ऑप्शन सी समाचार भारत, ऑप्शन डी भारत FM।
2: आकाशवाणी।
0: बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आकाशवाणी। आर्यभट्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आकाशवाणी इज द ऑफिशियल नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया रेडियो, जिसने डिकेड्स तक लोगों तक ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन बल्कि एंटरटेनमेंट को भी बराबरी से पहुंचाया है और आज भी इस जमाने में लोग इसका आनंद ले रहे हैं।
1: तो हमारा अगला सवाल है टीम रमन से, ध्यान से सुनिएगा। आकाशवाणी नाम देने का श्रेय किस महान साहित्यकार को दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विथ गिविंग द नेम आकाशवाणी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा।
2: टैगोर, ऑप्शन सी।
1: बिल्कुल सही जवाब आपका। आकाशवाणी शब्द गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। इस शब्द का अर्थ होता है आकाश से आने वाली वाणी। लेटर दिस बिकेम द ऑफिशियल आइडेंटिटी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।
0: अब बारी है हमारे तीसरी टीम यानी शिवाजी टीम की। आप शिवाजी टीम, आप रेडी हो जाइए क्योंकि सवाल आपके पास जाने वाला है। रेडियो में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो प्रोग्राम्स? ऑप्शंस हैं पायलट, ऑप्शन बी अनाउंसर, ऑप्शन सी इंजीनियर, ऑप्शन डी पेंटर।
2: द आंसर इज ऑप्शन बी अनाउंसर।
0: बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही जवाब अनाउंसर है। रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति को अनाउंसर कहा जाता है। उनकी वॉइस अट्रैक्टिव और क्लियर होनी चाहिए। अ गुड अनाउंसर कीप्स लिसनर्स कनेक्टेड टू द प्रोग्राम।
1: अब बारी फिर से टीम आर्यभट्ट की। तो हमारे फर्स्ट राउंड का सेकंड सवाल आपसे ये है कि आकाशवाणी मुख्य रूप से किस माध्यम से जुड़ी है? आकाशवाणी इज मेनली रिलेटेड टू विच मीडियम? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और ऑप्शन डी सिनेमा।

0: ऑप्शन सी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग।
1: टीएम आर्यभट्ट, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आकाशवाणी मेनली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से जुड़ी हुई है और इसने डिकेड्स तक म्यूजिक, न्यूज, एजुकेशन और कल्चरल प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाया है। इवन इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड रेडियो स्टिल कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ लिसनर्स।
2: अब हमारा अगला सवाल होने वाला है टीम रमन से। टीम रमन तैयार हो जाइए। आकाशवाणी का समाचार प्रसारण किस भाषा में होता है? In which language are Akashvani News broadcast presented? Now your options are Keval Hindi, only Hindi, Keval Angrezi, only English, Kai Bhashao mein, in many languages, Keval Sanskrit Bhasha mein, only Sanskrit.
1: Answer is in many languages, option C.
2: Team Raman, bilkul sahi jawab. The correct answer is in many languages. Akashvani broadcasts news in many languages. This helps people from different states understand information easily and it connects the whole nation together.
1: तो अब हमारा अगला और इस राउंड का आखिरी सवाल टीम शिवाजी से है। आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the headquarters of Akashvani located? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई।
3: द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली।
1: बिल्कुल सही जवाब टीम शिवाजी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आकाशवाणी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। फ्रॉम हियर मेनी नेशनल ब्रॉडकास्ट आर मैनेज्ड। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज रेडियो नेटवर्क।
2: सबसे पहले एक जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, चूंकि हमारा पहला राउंड खत्म हो गया है तो अब स्कोर भी जान लेते हैं। तो वाकई ये बड़े ही खुशी की बात है कि अभी हमारी तीनों टीम्स इक्वल चल रही हैं और इनके स्कोर्स भी इक्वल चल रहे हैं। क्या क्या स्कोर है?
1: टीम आर्यभट्ट, टीम रमन और टीम शिवाजी, तीनों टीम्स ने 10-10 पॉइंट्स स्कोर किए हैं।
2: तो ऑडियंस, इस एक्साइटिंग क्विज जर्नी में मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना मजा? चलिए, आप इसी एनर्जी के साथ में आप सेकंड राउंड में हम लोग एंटर करते हैं। आप हमारा जो सेकंड राउंड होने वाला है वो होने वाला है डायरेक्ट आंसर राउंड।
1: तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे इस राउंड से आपके लिए ऑप्शंस खत्म होते हैं, यानी अब आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है? तो टीम आर्यभट्ट, आपसे हमारा पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? वेयर डिड द
3: जलियांवाला बाग मैसेकर
1: टेक प्लेस?
4: अमृतसर।
1: बिल्कुल सही जवाब। ये घटना 1919 में अमृतसर में हुई थी। ये भारतीय इतिहास की दुखद घटनाओं में से एक है।
2: अब चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ और पहुंचते हैं टीम रमन के पास में। टीम रमन होशियार हो जाइए क्योंकि अब ये प्रश्न आपके पास पहुंचने वाला है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन?
3: '1942।
1: बिल्कुल सही जवाब। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 यानी 1942 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना था। तो अब टीम शिवाजी, आपसे हमारा सवाल है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? After how many years are the Olympic Games held?
3: पांच वर्ष।
1: अफसोस टीम शिवाजी, ये आंसर आपका गलत है। तो इसका उत्तर देने का मौका ऑडियंस को दिया जाता है।
3: 5 years।
1: बिल्कुल सही जवाब। तो कृष्णा, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में आयोजित होते हैं। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं।
2: चलिए, अब हमारा इसी राउंड का दूसरा सवाल हर एक जितने भी टीम्स हैं उनके पास में पहुंचने वाला है। तो हमारा जो अब अगला सवाल होने वाला है वो है टीम आर्यभट्ट से। टीम आर्यभट्ट, बी रेडी, आपका क्वेश्चन आपके पास पहुंचने जा रहा है।

0: लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? What is the chemical symbol of iron?
1: Fe.
0: टीम आर्यभट्ट, बिल्कुल सही उत्तर. The symbol Fe is the correct answer. It comes from the Latin word ferrum, which means iron. Iron एक metallic element होता है, which is used in making tools, machines, buildings and vehicles. और periodic table में इसका जो atomic number होता है, वो है 26.
1: तो टीम रमन, आपसे हमारा सवाल है कि बल का SI मात्रक क्या है? What is the SI unit of force? बिल्कुल सही जवाब. बिल्कुल सही जवाब टीम रमन. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. अच्छा, क्या आप में से कोई फोर्स का फॉर्मूला बता सकता है?
2: F इज इक्वल टू एम ए. एफ मीन्स फोर्स, एम मीन्स मास, ए मतलब एक्सेलरेशन.
1: बिल्कुल सही. एंड 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
0: अब बारी है टीम शिवाजी की. टीम शिवाजी, आपका जो क्वेश्चन है आपके पास पहुंचने जा रहा है. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When is National Science Day celebrated?
1: Answer is 28 February.
0: बिल्कुल सही उत्तर. National Science Day CV रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को किए गए रमन इफेक्ट की खोज की स्मृति में मनाया जाता है. इस खोज के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था. भारत सरकार ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया और इसे वर्ष 1987 से हर वर्ष मनाया जा रहा है.
1: दोस्तों, इसी के साथ हमारा राउंड 2 भी खत्म होता है. और चलिए आपको पॉइंट्स बता देते हैं. तो टीम आर्यभट्ट और टीम रमन दोनों इस समय इक्वली चल रहे हैं, यानी दोनों के 20-20 पॉइंट्स हैं. और टीम शिवाजी, इनके पॉइंट्स हैं 15. ठीक है, तो आपके पास अभी भी मौका है थर्ड राउंड का. थर्ड राउंड है अभी हमारे पास और आप इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, तो और ज्यादा कोशिश करिए. तो अब बारी है लास्ट राउंड यानी बजर राउंड की. तो आपके सामने बजर रखा हुआ है. हम आपसे सवाल पूछेंगे और सबसे पहले जो टीम बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका दिया जाएगा. लेकिन सबसे जरूरी और खास बात इस राउंड में कि ये इस राउंड में हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा. ठीक है,
0: तीसरे राउंड के लिए रेडी है? चलिए फिर इसी एनर्जी के साथ तीसरा राउंड भी अब हम शुरू करते हैं. तो हमारा तीसरे राउंड का पहला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर हमने देखा कि टीम आर्यभट्ट ने पहले बजर दबाया.
3: द करेक्ट आंसर इज भारत रत्न.
0: अफसोस टीम आर्यभट्ट, ये आंसर गलत है.
1: तो आर्यभट्ट के बाद टीम रमन ने बजर दबाया था. तो टीम रमन, आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा.
4: नोबेल प्राइज.
1: गलत उत्तर है आपका. तो टीम शिवाजी,
2: अशोक चक्र.
1: अफसोस, ये उत्तर भी गलत है. तो उत्तर देने का मौका ऑडियंस को दिया जाता है.
5: वीर चक्र.
1: बिल्कुल सही जवाब. कृष्णा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है.
0: आपको बता दें दोस्तों, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है. ये युद्ध के समय दुश्मन के सामने अद्वितीय साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है. इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी. ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित युद्धकालीन वीरता सम्मान माना जाता है.
1: तो अब हमारा दूसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? Where is the headquarters of United Nations located? तो टीम शिवाजी ने सबसे पहले बजर दबाया है.
2: White House.
1: नहीं, ये आपका गलत जवाब है. टीम आर्यभट्ट, आपने बजर दबाया, आप बताइए.
2: USA.
1: नहीं, ये जवाब भी आपका गलत है. तो ऑडियंस, ये क्वेश्चन आपको पास होता है.
5: न्यूयॉर्क.
1: बिल्कुल सही जवाब. तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क.

0: ऑफ सिटी में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और ये संगठन विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद सहित कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाती हैं।
1: अभी तक बजर राउंड में किसी के भी सही पॉइंट्स नहीं बने हैं, तो अभी भी मौका है, अभी भी सवाल बचे हुए हैं, तो ध्यान से सवाल को सुनिए और आंसर करके पॉइंट्स इकट्ठा करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम इज अ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? टीम रमन ने यहाँ बजर दबा करके यहाँ पर बताया है, तो चलिए अब जानते हैं उनसे सही उत्तर।
2: कर्नाटका।
1: अफसोस, ये जवाब गलत है। अब टीम शिवाजी की बारी है।
3: केरला।
1: नो, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। टीम आर्यभट्ट।
3: तमिलनाडु।
1: बिल्कुल सही उत्तर, एक जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ टीम आर्यभट्ट ने अपने पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है इस सही जवाब के लिए। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। इसका उद्गम तमिलनाडु में हुआ। पहले ये नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। भरतनाट्यम में भाव, राग और ताल का सुंदर समन्वय होता है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को अभिव्यक्त करता है।
0: तो अब हमारा चौथा सवाल ये है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू इज मेजर फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो टीम शिवाजी ने सबसे पहले बजर दबाया है।
4: अरुणाचल प्रदेश।
0: गलत उत्तर। तो ऑडियंस को ये पास किया जाता है।
3: उड़ीसा।
5: बिहार।
6: नागालैंड।
3: असम।
0: बिल्कुल सही जवाब, बिहू असम का प्रमुख और सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ये कृषि और फसल से जुड़ा उत्सव है। बिहू वर्ष में तीन बार मनाया जाता है, रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। इनमें रंगाली बिहू सबसे प्रसिद्ध है, जो असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये त्योहार असम की समृद्ध संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य को दर्शाता है।
1: अब हमारे राउंड थ्री यानी बजर राउंड का ये आखिरी सवाल है और इसी के साथ में ये राउंड भी समाप्त हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारा आखिरी सवाल है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? टीम शिवाजी ने बजर दबाकर उत्तर देने के लिए बताया है।
3: करेक्ट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान।
1: बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का मुख्य कार्य देश की शिक्षा नीतियों को लागू करना, स्कूल एवं उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाओं की देखरेख करना तथा नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सबसे एक्साइटिंग और नॉलेज से भरपूर राउंड यही समाप्त होता है और अब बारी आ गई है कि बारी बारी से दिव्या हम जान ले कि कौन कौन सी टीम ने कितने टोटल पॉइंट्स बटोरे हैं।
0: सबसे पहले बात करते हैं टीम रमन की, आपने टोटल 20 पॉइंट्स गेन किए हैं। उसके बाद टीम शिवाजी, आपके टोटल पॉइंट्स हैं 25 और टीम आर्यभट्ट, आपके टोटल पॉइंट्स हैं 30, यानी द विनर टीम इज आर्यभट्ट टीम। आज सभी टीम्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया
1: और हाँ दिव्या, कॉन्फिडेंस और शानदार टीम वर्क के साथ में भाई सभी टीम्स ने अपना अपना योगदान यहाँ पर दिया है, तो सभी टीम्स के लिए एक जोरदार तालियां। उसके साथ साथ हमारी ऑडियंस के लिए भी तालियां हो जाएं।
0: विनिंग टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बाकी सभी टीम भी अप्लॉज डिजर्व करती है, क्योंकि आपने कंपटीशन को बहुत ही एक्साइटिंग बना दिया था। तो जीत सिर्फ मार्क्स की नहीं होती बल्कि लर्निंग, पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस की भी होती है।
1: बिल्कुल सही बात कही दिव्या तुमने। आकाशवाणी के 90 वर्षों की ये जर्नी सिर्फ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की कहानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, संगीत, साहित्य और

0: और जन जागरूकता का इतिहास है।
1: और आज की इस क्विज कंपटीशन ने ये साबित कर दिया कि नई जनरेशन भी नॉलेज और क्रिएटिविटी के साथ इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह रेडी है।
0: बिल्कुल, वी वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, जजेस एंड ऑडियंस फॉर मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल एंड ब्यूटिफुल ऑल्सो।
1: तो टीम आर्यभट्ट, आप इस क्विज के विजेता हैं, तो आप बताइए आपको यहाँ पे कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटिंग था।
3: बहुत अच्छा लगा और हम लोग को ये गेम खेलकर बहुत खुशी हुई।
4: बहुत अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला,
5: करके हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला।
6: इस गेम को खेल के हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और बहुत सारी नई नई चीजें हमें सीखने को मिला।
0: टीम रमन से भी फीडबैक जान लेते हैं कि हमारी आकाशवाणी की टीम यहाँ पर आई और आपने इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कैसा महसूस हो रहा है?
7: बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है ये जानकर कि यहाँ पे हम लोग के मतलब क्विज के लिए आकाशवाणी की टीम आई है।
1: टीम शिवाजी, आप बताइए आपको कैसा लगा इस क्विज में पार्टिसिपेट करके?
8: बहुत अच्छा लगा और हमने न्यू एक्सपीरियंस लिए और हमें बोलने के लिए टाइम मिला और ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था।
1: अब ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लगा?
9: काफी अच्छा लगा, बहुत ज्यादा कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली और हमने ये जानने को मिला कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं।
0: चलिए बात करते हैं विद्या विहार इंटर कॉलेज एवं मॉडल स्कूल के इसके कोऑर्डिनेटर सर से, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित सफलतापूर्वक हो पाया। तो सर, आपको कैसा लगा हमारी टीम यहाँ पर आई और कैसा फील हो रहा है आप?
10: मैं सबसे पहले आकाशवाणी मामूरगंज की टीम को बधाई देना चाहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ हमारे स्कूल के प्रांगण में। और आप लोगों ने, आकाशवाणी टीम ने हमारे बच्चों को जो आज इतने अच्छा ज्ञान और एक पब्लिक प्लेस में खड़ा होकर बोलने का जो एक विश्वास पैदा किया, उनके लिए मैं आप सभी का थैंक्स देता हूँ। थैंक यू।
11: मैं मानवी विश्वकर्मा, विद्या विहार मॉडल स्कूल की टीचर। क्विज कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा और बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया था, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस।
12: तो इसी के साथ आज का ये क्विज कंपटीशन यहीं पर ओवर होता है। वाकई इन बच्चों की एनर्जी देख करके और इनका कॉन्फिडेंस देख करके हमारा भी कॉन्फिडेंस और जो ये एनर्जी है ना, वो हाईली जम मोड पर आ गई है, क्यों दिव्या?
1: बिल्कुल, और हम सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, निर्णायकों और उपस्थित श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और इस शुभकामना के साथ कि आकाशवाणी यूं ही अपनी आवाज से दिलों को जोड़ती रहे। आज आपके साथ थी आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट दिव्या
12: और नेहा।
1: अब हमें दीजिए इजाजत,
12: नमस्कार।
13: तो दोस्तों, ये तो आपने सुना क्विज और बच्चों का कितना उत्साह था उसके बारे में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, पर जाते जाते हम बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखें और वायु प्रदूषण बिल्कुल ना फैलाएं। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के तालनदौर में 393 करोड़ रुपया के लागत से बनावल जा रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नींव ढेले। इस मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री स्टेडियम के बगल में विश्व स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनौले की घोषणा कर लें। वहां के बतौले कि स्टेडियम आ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लगे होटल, रेस्टोरेंट और बाजार के नया श्रृंखला विकसित कर जाये, जिसे ढेरी संख्या में रोजगार पैदा हुई। श्री योगी कहने कि खेलो इंडिया खेलो आ फिट इंडिया मूवमेंट के जरिया से देश और प्रदेश में एगो नया खेल के संस्कृति आगे बढ़ल है।
1: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक खेलो इंडिया खेलो के स्लोगन दिया, फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभा इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी।
0: मुख्यमंत्री बतौने कि प्रदेश में अगले 534 से बेसी पदक जीते वाले खिलाड़ियों के सीधी भर्ती से नौकरी दी हल जा चुकल है। अब 500 खिलाड़ियों बदे नया भर्ती के तैयारी बा। इस मौका पर मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी कहले कि गोरखपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नौजवानों के सपना और संभावना के नया दिशा दे। इस मौका पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कमलेश पासवानो मौजूद रहले। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित भइले के बाद छात्रन बदे कई गो सुविधा के घोषणा कइले हवे। बोर्ड एबेरी मूल्यांकन प्रक्रिया के औरियो बेसी सटीक और पारदर्शी बनावे बदे ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली के उपयोग कइले ह। एगो रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र निसंतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरहद नाज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी के पुणे से गिरफ्तार कर ले रहे हो। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हमें NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल रहे। एजेंसी पिछले 24 घंटा में देश भर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलौलस और कई गो आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त कैलस। इससे पहले गिरफ्तार कैल गए 5 आरोपियों में से 3 गो जयपुर से, एगो गुरुग्राम से और एगो नासिक से हवे। दुनिया भर में कच्चा तेल के दाम में आयल उछाल के बाद तेल कंपनी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर ले। राज्य के प्रमुख शहरन में अब पेट्रोल के दाम औसतन 95 से 97 रुपया प्रति लीटर और डीजल के दाम करीब 88 से 91 रुपया प्रति लीटर हो गए बा। प्रदेश के सज्जो जिलन के सज्जो तहसीलन में आज संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन कल गयी। इस दौरान अधिकारी लोग जन समस्या के सुनवाई करत ओकर गुणवत्ता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए। बस्ती के सदर तहसील में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह लोगिन के समस्या सुन लें। बलरामपुर के सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी विपिन जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौजूद रहले। प्रदेश के सज्जो पूर्वी जिलन में बस सावित्री के त्यौहार आज श्रद्धा भक्ति और उछा के माहौल में मनावल जा रहा बा। प्रयागराज में आज सवेरे सुहागिन महिला लोग बट वृक्ष के पूजा करके अपने सुहाग के लम्हर उमेर और बढ़िया सेहत के कामना कैलिन। गोरखपुर और गाजीपुर में निर्जल व्रत रही के महिला लोग बट सावित्री के पूजा कैलिन। ए त्योहार के महात्म सावित्री और सत्यवान के कथा से जुड़ल है, जिमे माता सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण के रक्षा कैले में सफलता पौल रहें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं।

सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, और सुगम संगीत में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे राजेंद्र मेहता और नीता मेहता के गाये गजल। हिंदी वार्ता इस कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनेगा हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण, इस विषय पर शशिकला सिंह की वार्ता।

किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आम अमरूद और आंवला की पौध प्रवर्धन तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर ज्योति सिंह की बातचीत और साथ ही साथ सुनेगा गीतांजलि मौर्य का गाया लोकगीत भी। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल्याणी 17 मई 2026 दिन रविवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के अन्य कार्यक्रमों में सुनिएगा 7:31 पर विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, और सुगम संगीत में रात्रि 8 बजे सुनिएगा लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के गाये गजल। पत्र के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपके पत्रों के उत्तर देंगे अरुण पांडे और सना सलीम। प्रसारण समय होगा शाम 7:31 पर, और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। बातचीत का विषय होगा फल वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व और उसकी उपयोगिता, इस विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिंह की बातचीत, और साथ ही साथ सुनेगा छाया मिश्रा का गाया लोकगीत भी। श्रोता, इन्हीं के गाये लोकगीत आप सुन सकेंगे 9:50 पर भी। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:15 पर, और बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल गोपाल शाम 5 बजे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर, और दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज इतवार है में दिनेश भारती की लिखी झलकी प्रेम पत्र। हेलो फोन फरमाइश का प्रसारण समय होगा दिन में 12 बजे। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की, और स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का प्रसारण समय होगा दिन में 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता, इस विषय पर डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी से शिखर श्रीवास्तव की बातचीत। बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल संघ लेकर हम हाजिर होंगे दिन में 11 बजे। छुट्टियों में सीखें कुछ नया, बच्चों की विविध प्रस्तुति, और साथ ही साथ बच्चे सुनेंगे बाल गीत भी। असमिया भाषा में सामुदायिक गण शिक्षा पाठ आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर, और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय होगा सुबह 7 बजे से। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर, और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा इस मौसम में आहार विहार, इस विषय पर डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे की दी गई जानकारी। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय होगा सुबह 6:10 पर, और खेती की बातें इस कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर सुनिएगा सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर दिनेश कुमार सिंह की दी गई जानकारी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: फिल्म संगीत में सुनिए दामिनी फिल्म का गीत। मिली जुली आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। राजू बन गया जेंटलमैन, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में।

0: राजू बन गया जेंटलमैन। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: पंचो राम राम। बुझावन भैया,
1: हर मिसर भैया,
0: अरे का हाल चाल है? कुछ हमानों के बुझावा भैया।
1: ये भी बुझा वाली बात जो कहला है ना, तो हाल चाल तो देखा है ठीक
0: हाँ
1: आया। बुझा के बात वो कहला है ना,
0: हाँ
1: तो तुम खूब बुझते होगा कि ये समय का हो जाता खेती बाड़ी में।
0: भैया देखा, खेती बाड़ी में तो सबकर इसमें लहान जुहान तर तरकारी के जेकर बा ओकर तो चौचक बा।
1: हाँ
0: जे अपने आप के तनी सा जुझारू समझला, प्रगतिशील किसान समझला, जे तनी अपने आपके जमाने से कदम मिला के समझला कि हम चलब, तो
1: हाँ मैंने
0: देखा
1: सोचा
0: वो।
1: लाई कि भैया हमारे खेती बाड़ी बढ़िया होता है।
0: हाँ वो देखा, वैसे धान का नर्सरी कैसे लगावे के हा, कौन बिया बोवे के हा, महीन बोवे के हा, कि तनी मीडियम में बोवे के हा। कहे थे कि देखा लहान जुहान कुल देखे के पड़ा ला, ये नहीं कि चहले से महीन बोल चाहत हुआ तो महीन बोई देबे, वैसन भैया पानी का लहान चाहिए, वैसन खेत चाहिए। तो कहे
1: अच्छा
0: तम
1: बिल्कुल सही बात कहला भैया। एक चीज़ और है,
0: का।
1: अब जो ना प्रगतिशील किसान के जो बात कहला है ना, अब
0: हाँ
1: वो लोग तो सोचत बाने कि हमन अब बिया के तैयारी करल जाए, नर्सरी के तैयारी करल
0: हाँ
1: जाए।
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: एक चीज़ और है, कुछ हमारे किसान भाई गर्मी की जुताई भी करावत बाना, और
0: बिल्कुल, ताकि
1: गर्मी की
0: माटी
1: जुताई,
0: सुनहा जाए। हाँ
1: हाँ और गर्मी की जुताई करने के बाद सोचत बाने तो इसे हरी खाद और अभी का हो जाए,
0: हाँ हाँ हाँ सोने
1: कैसे कि
0: पे
1: हरी,
0: सुहाग।
1: हाँ हरी खाद जब भैया खेते में हो जाले ना,
0: हाँ
1: तो हई जो रासायनिक खाद होले ना,
0: एक लोड कम
1: तो
0: हो
1: लोड
0: जाला,
1: कम हो जाला और
0: बिल्कुल।
1: कम डाले के बोले। अच्छा सरकार का भी प्रयास बा
0: और
1: कि
0: स्वाद
1: भाई
0: भी आवला भैया,
1: बिल्कुल आवला
0: जौन
1: भैया।
0: फलत होला तर तरकारी का चाहे भैया कोनो भी उत्पाद का, तो
1: अब जैसे
0: मतलब।
1: हमारे पंचायती में जो डॉक्टर भैया लोग नाम ना,
0: हाँ
1: अब वो जिससे अब कहा ना भैया रासायनिक खाद के कम डाला,
0: हाँ हाँ
1: अब डाई भर यूरिया भरे कर मात्रा कम करा, कार्बनिक खाद का ज्यादा, हरी खाद का ज्यादा प्रयोग करा,
0: ये
1: तो
0: बुझावन
1: हरी खाद का भैया वही समय हो रहा
0: बिल्कुल, ये बुझावन भैया आपके हम बताएं, बहुत
1: हर में
0: सा
1: सब भैया।
0: शहरी इलाकन में ऐसा संदेश अब धीरे धीरे प्राप्त होता, संचार का माध्यम है, दूर संचार
1: बिल्कुल
0: का,
1: बिल्कुल
0: दुनिया एक तरीके से एक जुड़ गल है आपस
1: माने
0: में।
1: सभी जागरूक हो गए बा।
0: अब बहुत सा ऐसा बाजार हो जहाँ किसान भैया लोगन के जो उत्पादन है वो भैया खाली उनकर लिख देहले से कि हमार जो सब्जी है वो रासायनिक खाद का नहीं प्रयोग भेल है, जैविक खाद का प्रयोग भेल है, केचुआ खाद का प्रयोग भेल है, हरी खाद का प्रयोग भेल है, वो लिख के बैनर फोटो लगा के सब्जी के लगे रख देते हुआ। भाई ग्राहक एक बेरी में तो विश्वास करिए ना, लेकिन वो ले जाते हुआ आ उनके, भाई जाहिर सब बात है कि जौने सब्जी में जौने पेड़ पौधा में रासायनिक खाद पड़ल हुई ओकर तर तरकारी जो निकली, आ जौन भैया जैविक खाद से जौन भिंडी करेला नेनुआ ये कुल
1: लौकी
0: निकली ओकर स्वाद भैया अलग है बोली। तो ऐसन किसान भैया लोगन जौन ये प्रचार प्रसार के माध्यम से बाजारे में तर तरकारी बेचत हुआ, उनकर ये हाल बा कि गाहक हेरत हुआ, पता चलल कि उनकर सौदा बिक गल, कहे कि विश्वास जमा ले ले हुआ, बाजारे में उनकर माल जा था, स्वाद के अनुसार उनकर माल समय से पहले बिक गया था।
1: ये देखो भैया, खेती बाड़ी जोन हुआ ना,
0: हाँ
1: अपने कर्म का है और अपने
0: हाँ
1: विश्वास का है।
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: अगर कायदे के तू पैदा करत हुआ,
0: हाँ
1: अब जैसे जैविक खेती के बात की ला,
0: हाँ
1: जैविक
0: हाँ
1: खेती से जोन हम उत्पादित करें ना किसान भाई
0: हाँ
1: जोन
0: हाँ हाँ
1: सब्जी बा,
0: हाँ हाँ
1: वोकर अगर हम किसान भाई इनके पता चल गल कि नहीं बढ़िया चीज़ है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: भैया वोकर बाजार में वोकर भाव बढ़िया मिला ला।
0: बिल्कुल भैया, ये कुल देख ही के मिलत बा, आ देखा आदमी देखल है कुल तब जब भैया नीमन आँख रहला हो।
1: अरे भैया बिल्कुल सही, मतलब आग ठेहुन बढ़िया बा
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: खेती बाड़ी बढ़िया बा, और आग
0: बिल्कुल,
1: ठेहुन बढ़िया नहीं बा भैया,
0: तो कुल
1: तो खेत
0: भैया
1: कुल
0: हो
1: बेकार बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज अपने कार्यक्रम में हमन यही बात पर विशेष बात कही करल जाई कि नेत्रदान
1: महान
0: महादान।
1: अच्छा
0: भैया देखा हमन के दुनिया कितना बढ़िया लगत है, काहे से कि आँखी से कुल लौकत बा, जेकरे नहीं भैया अगर ओके आपन ई आँख ए दुनिया के लोगन के सहयोग से अगर आँख मिल जाए तो का कहे के आए मन, जौन भी मनई लोग हम निस्वार्थ भाव से अगर मन बना लें कि हम अपने मरले पर या अपने जीवन के अंतिम समय में हम अपने आँखी के दान करब, ई अगर उ लिख के दे दें तो निश्चित रूप से

0: जो नेत्रदान होला ये महादान का रूप ले
1: अच्छा,
0: लेवलन
1: एक
0: भैया।
1: बात जोन बात कला भैया, नेत्रदान महादान ना
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: चीज और कहल जाला, जानत हुआ
0: का
1: का
0: का भैया
1: तनी बुझा तो बताई।
0: बतावा भैया बतावा।
1: ये नेत्रदान के श्रेष्ठ दान भी कहल जाला है, का जानत
0: हाँ
1: हुआ। आँख से कीमती कोई रत्न ना होला।
0: कौनो नहीं
1: हाँ
0: भैया कौनो
1: अच्छा,
0: नहीं
1: इससे बढ़ करके कोनो दान भी नहीं होला।
0: बिल्कुल
1: माने
0: बिल्कुल।
1: कहल
0: हाँ
1: जाला, हमन
0: हाँ
1: के दादा उदा सुनले बाड़ी जाए,
0: हाँ हाँ
1: कहावत
0: हाँ
1: कहले
0: हाँ
1: बाड़े कि भैया

0: जाए
1: हाँ हाँ
0: भागवत
1: हाँ हाँ
0: कहले
1: हाँ
0: बाणे कि भैया इससे बढ़ के कोनो रतन नहीं खा
1: बिल्कुल
0: और इससे बढ़
1: बिल्कुल
0: करके कोनो दान नहीं, कैसे
1: बिल्कुल
0: कि भैया तो हमारे पास आँख बा, तुहरे पास बाय तो देखत बड़ी दुनिया और बड़ा
1: हाँ
0: खूबसूरत लगत बा, ओकर आनंद भी मिलत बा, और जेकरे
1: हाँ
0: पास ना बा भैया आँख ना,
1: हाँ
0: तो उसे पूछा।
1: बिल्कुल भैया देखें, सरकार का भी पहल रहला, अपने स्वास्थ्य विभाग का भी पहल रहला, हालांकि पहले उतना जागरूकता नहीं रहे बुझाउन भैया,
0: हाँ
1: लेकिन अब
0: जी
1: जागरूकता बढ़त है, लोग एकर महत्व समझत हवा कि नेत्रदान कैले पर कोई अगर नेत्रहीन मनई के अगर रोशनी मिल जाए, आँखें के जे नहिं देखले ओके देखे का सुविधा मिल जाए, तो समझ ला कि आपन भी जीवन सफल भल जौन जिला आ दुनिया में न रहले के बाद अगर वो आँख कोई के काम आगल बुझावन भैया तो वहू के जीवन सफल हो
0: ये
1: गल।
0: रमेश्वर भैया यही पे
1: हाँ
0: कहल जाला ना कि
1: हाँ
0: आपकी आंख दुनिया के देखे, आपके साथ भी मतलब
1: तोरे
0: तोहरे साथ भी
1: बाद
0: और
1: भी
0: तोहरे बाद भी,
1: बा भैया
0: माने
1: बा। हाँ
0: जब तक बाड़ा तुम देखा आ
1: हाँ
0: कोई के नेत्रदान कह देला
1: न
0: भैया
1: रहले पर
0: ना
1: भैया दूसरे के
0: दूसरे
1: देखावा।
0: दूसरे के दिखावा,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: इससे
1: हाँ
0: बढ़िया दान का होला ये
1: का
0: रामेश्वर भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कहला भैया कि आँखी के साथ भी आ न रहले के बाद भी, बिल्कुल भैया बहुत सही बात कहला, तो बहुत भैया पंच लोगन के समझ में आ गेल हुई। आ देखें पुरान कहावत है कर भला तो
0: तो
1: हो
0: होई
1: भला,
0: भला
1: बहुत से पंच भैया लोगन के कभी कभी मन में आवला कि हम इतना बढ़िया काम करत हई हमारे साथे बढ़िया नहीं होत, लेकिन बुझावन भैया देखा प्रकृति का प्रभु का माया है, कभी कभी होला का कि अपने हो सकला उतने बढ़िया कर्म को फल न मिल पावे, लेकिन ओकर लाभ अपने अगली पीढ़ी के
0: अगली
1: मिला
0: पीढ़ी की मिली और मिलल भैया।
1: मिला ला भैया मिला ला,
0: अच्छा
1: भगवान के
0: ये
1: यहाँ देर है
0: भैया
1: भैया अनहेर नहीं बा।
0: बिल्कुल अंधेर नहीं है। अच्छा एक चीज और है ना कि कहल जाला कि मरल जब शरीर अमर होले आत्मा है ना, आ नेत्रदान से मिले ला स्वयं परमात्मा, जिसे
1: बिल्कुल
0: भगवान के नाम ले ला है ना, तो
1: हाँ
0: भैया नेत्रदान करे के चाहिए। अच्छा एक ठे बड़ा भ्रम बा समाज में या भाई बंधुन में कि नेत्रदान कैले से चेहरा बिगड़ जला, विकृति आ जाले।
1: ए भैया जब रहबे न कर शरीर तो मन का बिगड़ी उ तो आगी में जर जाए के बाद जाए माटी में मिल जाए के बाद भैया, तो अगर न रहले पर जब शरीर के फुका तपा जाए के बाद
0: हाँ हाँ
1: दफन हो जाए के बाद, तो
0: हाँ
1: भैया हो अगर उस शरीर का कौनो अंग बुझावन भैया बुझत हो का न रहले पर शरीर का कौनो अंग अगर कोई के काम आ जाए ओकरे बाद तो माटी में मिली जाए के बाद, जब
0: बिल्कुल
1: भाई
0: मिल जाएगी
1: जीवन का
0: बात।
1: अपने अंत हो गल आ समय से मालूम हो गल, तो निश्चित रूप से हम तो बुझावन भैयाई कहब कि जीवन का सच्चा उपयोग एके माना कि जीवन जब है तो अपने मन से जीले अपने मन से खैले पियले ओढ़ले भैया हो, आ आँख का ऐसा एक खिदान करके अगर जाए का मौका मिल गल कि शरीर के न रहले पर भी अपने आँख से दूसरे के नेत्रहीन जे बाओ के अगर दृष्टि मिल गल, तो ऐसे बढ़िया हम समझत है कि पुण्य
0: अच्छा
1: काम कोनो बा
0: दृष्टि भी
1: नहीं।
0: मिल गए हो रमेश्वर भैया, एक
1: हाँ
0: चीज और है,
1: का
0: समाज में एक बड़ा बढ़िया संदेश भी जाई कि देखा भैया
1: हाँ
0: गईना तो गईना अपने,
1: हाँ
0: लेकिन कम से कम दो आदमी के
1: जीवन देखे गई
0: जीवन
1: ना
0: नेत्रदान
1: आखी का
0: देख दे,
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: आँख
1: बिल्कुल
0: जिसे वो दुनिया देख सकें,
1: हाँ
0: जिसे हम दुनिया के खूबसूरत दुनिया के देखत बाड़ी आनंद
1: हाँ
0: लेत
1: हाँ हाँ
0: बाड़ी, उससे
1: हाँ
0: वो भी व्यक्ति देख सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आ देखें पुरान कौनो भी कहावत कहानी खिस्सा सुने भैया, चाहे रहीम दास जी का दोहा हो, चाहे कबीर दास जी का दोहा हो, चाहे घाघ बद्री का कहावत हो, चाहे
0: हाँ
1: नानी नन्ना दादी दादा का कहानी खिस्सा हो,
0: हमनो बहुत
1: सब
0: कहानी के खिस्सा सुन ले बढ़िया
1: बिल्कुल
0: भैया।
1: सब का निचोड़ यह आवाला भैया कि बढ़िया करबे तो बढ़िया जरूर होई,
0: होई
1: आज न होई लेकिन देरी से होई लेकिन
0: जरूर
1: जरूर
0: होई।
1: होई। का और आगे का कहते हो कार्यक्रम में का का होई?
0: अच्छा ये भैया
1: हाँ
0: देखा अभी
1: गीत
0: तो नेत्रदान पर हमन चर्चा पर चर्चा कर लिया जाए,
1: हाँ। अब
0: लेकिन
1: कुछ गीत गौनाई का भी
0: गीत
1: चर्चा हो तो आज का तो कुछ दूसर दिन है।
0: आज बहुत शनिवार हमारे किसान भाई जोहत भी हुई हैं, तो
1: हाँ।
0: आज के गीत गौनाई में लोक भाषा
1: कवि
0: कवि
1: गोष्ठी है
0: गोष्ठी
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: रंजना देवी और गिरीश कुमार श्रीवास्तव का
1: हाँ
0: कवि
1: लोग आज
0: गोष्ठी।
1: का जो कहला कि अपने अपने तरीका से
0: हाँ
1: कवि गोष्ठी लोग करत हवा आवा सुनल जा लोक भाषा कवि गोष्ठी।
2: आज यह लोक भाषा कवि गोष्ठी में भैया हमारे साथे रंजना देवी कवित्री वाराणसी से और गिरीश कुमार श्रीवास्तव कसनही सेवला जौनपुर से आप सबके पंचैती में कविता सुनावे बदे हम सब आए हैं।

0: हम चाहत कि रंजना देवी जी अपन काव्य पाठ करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके।
0: स्वागत
1: सुनी
0: भैया,
1: एक
0: स्वागत।
1: गीत सुनी, यह भ्रूण हत्या पे, कन्या भ्रूण हत्या पे।
0: वाह।

0: अब गीत का आखिरी बन सुनी
1: स्वागत।
0: कि जब जब हुके उठे ही रामे तो हई के गोहराई,

बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंजना। तो भैया ये रंजना देवी रही हैं तुम्हें सबके भ्रूण हत्या पे, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर गीत सुनाई हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ छंद हम तुम्हें सबके सुनाई, गंगा के ऊपर कुछ छंद देखे भैया लिखे है ही हम आप सब बदे। सुना कि पावन पुण्यमयी तट गंग धर्म धजा फहरावत साधु, पावन पुण्यमयी तट क

0: दूध पूत निहाल रहें भल पूजी के पाऊं मनावत गंगा। और जोरी के गांठी गिरीश उमा अनुरागन शीश नवावत गंगा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: जोरी के
1: बढ़िया।
0: गांठी गिरीश उमा अनुरागन शीश नवावत गंगा। देखा भैया गंगा को पूजा कैसे करते हैं
1: जी जी
0: कि पाऊं

0: भारत
1: गंगा,
0: गंगा। बहुत बड़े बहुत
1: धनी
0: बड़े।
1: धरा सुख मानत भारती, आरती नित्य उतारत गंगा। और देखा भैया कैसी पूजा होत बा
0: जी जी
1: कि
0: स्वागत।
1: सोहत शीश शशि, सोहत सी

0: काशी के बासी निहाल सदा बिहसी अनुराग लुटावत गंगा घाट ही घाट विशाल बपाट छटा अखिया के लुभावत गंगा और जोरी के गांठी गिरीश उमा हर साई के शीश नवावत गंगा
1: बहुत बढ़िया,
0: जोरी
1: बहुत
0: के

0: आई। और कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छंद देखें
1: जी जी स्वागत।
0: कि आए न श्याम सखी कहि के तड़पै जिय राजस मीन पियासी।
1: बहुत
0: आए न
1: बढ़िया।
0: श्याम सखी कहि के तड़पै जिय राजस मीन पियासी। अनिद हेराई गचैन परा।

0: गाढ़े
1: बहुत
0: गंभीर
1: बढ़िया, बहुत
0: गिरीश
1: बढ़िया।
0: पुकारत, हे गुरुदेव तुहार दुहाई। यह कवि गोष्ठी में रंजना देवी वाराणसी से और हम गिरीश कुमार श्रीवास्तव कसनही जौनपुर से आप सबके बीच में कविता पाठ की है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बुझाओन भैया।
5: हाँ रामेश्वर भैया,
4: सनेस के पहले तो बहुत बढ़िया कवि गोष्ठी सुनौला भैया।
5: भैया बहुत आनंद भी आयल है।
4: हाँ
5: भैया, इमन जोन प्रतिभागी जोन कबीर रंजना देवी और गिरीश कुमार श्रीवास्तव का
4: दोनों लोग के
5: हाँ
4: दिहल धन्यवाद भैया। आ समसामायिक बात पर जब कभी गोष्ठी होला, कभी चर्चा होला, तो ओकर बात ही अलग होला। आ देखें समाज में दो तरह के विचारधारा हमेशा चले ले। एक भैया सकारात्मक जोन देश के आगे बढ़ावे के बात कर रहे हैं, और एक भैया कुछ ऊ विचारधारा जोन पुरानी जोन रूढ़िवादी परंपरा हैं उन पर आघात करके, उन पर कटाक्ष करके उनके मिटावे के प्रयास करें नहीं। आई दोनों विचारधारा देश हित में हवा, काहे कि नया सोच जोन विज्ञान का है ओकरे साथ भी चलब जरूरी है। आ कुछ सब नहीं भैया, बुझाओन भैया फिर से कहा सही, कुछ सब नहीं, बहुत सामान का परंपरा ऐसा है जोन गौरवान्वित करे वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा परंपरा हैं जो न आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं, उनके निश्चित रूप से समय के अनुसार छोड़ देवे के चाहिए। जैसे भेदभाव, ऊंच नीच, लड़का लड़की, ये सब जो लिंग भेद के आधार पर जो न समाज के लड़का लड़किन के बांटल जला, ये सब का अब जमाना गयल। अभी है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, लड़ा मत, लड़ावा मत, देश के आगे बढ़ावा भैया।
5: बात भैया बहुत बढ़िया बोल रहा है
4: हाँ।
5: कि सोच जवन आपन होए के चाहिए,
4: हाँ।
5: सकारात्मक होए के
4: सकारात्मक
5: चाहिए।
4: हो चाहिए, अझूरे झूर नहीं भैया। का
5: अच्छा,
4: कहत हुआ
5: ये भैया
4: हाँ।
5: कभी गोष्ठी तो हो गई।
4: हाँ।
5: आ जोन दूसर का बा मरमय सायन
4: हाँ।
5: किसान भाई जोहत भी हूँ
4: हाँ।
5: हमन के पंचायती में जब तक किसानी गीत देशभक्ति गीत नहीं होले
4: भैया हाँ। तब तक मन नहीं भरा था
5: हाँ। तो भैया आज के लोकगीत में गीतांजलि मौर्य का अपन किसानी गुत अपने
4: बा भैया बा सुनल जा।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बुझावन भैया,
1: रामेश्वर भैया।
0: बिल्कुल भैया, बहुत महान बा अपने देश का माटी गीत गौनी के माध्यम से बतौनी गीतांजलि मौर्या बहिन। आ
1: बिल्कुल भैया,
0: देखा आप काल कार्यक्रम में काका हुई जाने वाले जा। काल सवेरे 6:05 पर खेती के बारे में गर्मी की जुताई का महत्व का है दिनेश कुमार सिंह भैया जानकारी दी है।
1: भैया रामेश्वर भैया
0: हाँ
1: सांझी किए अपने कृषि जगत कार्यक्रम में
0: हाँ
1: छः
0: हाँ
1: बज के 30 मिनट पर
0: हाँ
1: बातचीत हुई फल वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व और उसकी उपयोगिता
0: हाँ
1: के बारे में जानकारी दी है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिंह।
0: अब घड़ी का सुई इशारा करत है चला चले के, तो पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कुमार सानू की आवाज में सुनिए आशिकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को लिखा मदन पाल ने और धुन तैयार की नदीम श्रवण ने।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे विजयपथ फिल्म का ये प्यारा सा गीत। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना गढ़वार जनपद बलिया से प्राप्त सूचना अनुसार सीता पुत्री योगेंद्र 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे घर से निकली और वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 14 वर्ष, रंग सांवला और कद 5 फीट, और ये लाल रंग का सलवार सूट पहनी हुई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 8874876639 इस नंबर पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार नंदिनी जायसवाल पुत्री राजू जायसवाल 20 नवंबर 2024 को सत्संग शिवपुराण डोमरी पड़ाव से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 28 वर्ष, इनका रंग गेहुआ है और इनका कद है 5 फीट। ये काले रंग का जीन्स, हरा शर्ट और सफ़ेद रंग का जूता पहनी हुई हैं। जिस किसी भी सज्जन को इनकी जानकारी मिले वो इनकी सूचना अपने निकटतम थाना या 8181068780 इस नंबर पर सूचित करें और सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:19 होने को हैं। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 7:20 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के

0: विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल

0: एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी, बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
1: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
1: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी वार्ता। हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण, इस विषय पर शशिकला सिंह की वार्ता।
2: हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण जो न केवल साहित्य का अपितु मानव जीवन के आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। प्रकृति यह सब सुनते ही हमारे मन में हरियाली भरे खेत, कलकल बहती नदियां, पर्वतों की ऊंचाइयां, पक्षियों का मधुर कलरव और चांदनी रात की शीतलता जीवंत हो उठती है। प्रकृति केवल हमारे चारों ओर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी बसती है। मनुष्य का जीवन प्रकृति के बिना अधूरा है। यही कारण है कि साहित्यकारों ने प्रकृति को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। प्रकृति मानव जीवन की आदि सहचरी रही है। मानव ने जब पहली बार इस धरती पर आंखें खोली तब उसने अपने चारों ओर पर्वतों, नदियों, झरनों, वृक्षों, फूलों, चांद, सूरज और तारों को देखा। यही प्रकृति उसके सुख दुख की सहभागी बनी। साहित्यकारों ने भी प्रकृति को केवल बाहरी सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि उसे अपनी संवेदनाओं, अनुभूतियों और भावनाओं का माध्यम बनाया। हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में प्रकृति चित्रण अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में प्रकृति का चित्रण अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा का हिस्सा रहा है। विभिन्न युगों के कवियों ने प्रकृति को अलग अलग रूपों में देखा और प्रस्तुत किया। किसी ने उसे अपनी प्रेमिका माना, किसी ने माँ, किसी ने ईश्वर का स्वरूप दिया और किसी ने मानव भावनाओं का दर्पण माना। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के परिदृश्य में प्रकृति को देखेंगे। आदिकाल में प्रकृति का चित्रण युद्धों के बीच एक पृष्ठभूमि के रूप में हुआ था और भक्तिकाल में प्रकृति का रूप अधिक जीवंत और आध्यात्मिक हो गया। मुख्य रूप से सूर, तुलसी, कबीर की रचनाओं में परिलक्षित होता है। सूरदास ने वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी रचनाओं में अत्यंत मधुरता से प्रस्तुत किया है। सुख ब्रज को सौ संसार, कहां सुखद वंशी तट यमुना, यह मन सदा विचार, कहां बन धाम, कहां राधा संग, कहां संग ब्रज, कहां लता तरु तरु प्रति झूलनी कुंज कुंज बन धाम। इसी प्रकार तुलसीदास ने वनवास के प्रसंगों में प्रकृति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। चित्रकूट, पंचवटी, प्रदेशों का वर्णन पाठक को मानो उस वातावरण में पहुंचा देता है। तुलसीदास ने लिखा था कि हरति भूमि त्रिन संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड वाद तेन लुप्त होई सदग्रंथ। इसके बाद रीतिकाल में प्रकृति मुख्य रूप से सिंगार रस की सहचरी बनकर सामने आती है। बसंत ऋतु को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। फूलों की सुगंध, कोयल की कूक और चांदनी रातों का वर्णन प्रेम भावनाओं को और अधिक मधुर बना देता है। उस समय के कवियों ने प्रकृति को सौंदर्य और प्रेम की भाषा बना दिया। आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण में एक नया आयाम प्राप्त किया। विशेष रूप से छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानव मन की संवेदनाओं से जोड़ दिया। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनके काव्य में प्रकृति केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवंत अनुभूति बनकर सामने आती है। वे लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। उनकी कविताओं में हिमालय की भव्यता, फूलों की कोमलता और पवन की मधुरता मनुष्य के भावों से जुड़ जाती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आरंभकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में साहित्यिक, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित था। इस काल में प्रकृति चित्रण अपेक्षाकृत

कम दिखाई देता है, क्योंकि साहित्यकारों का ध्यान समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण की ओर अधिक था। फिर भी प्रकृति उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया। प्रकृति यहाँ सजावटी रूप में अधिक दिखाई देती है। कवियों ने ऋतुओं, फूलों और बागों का वर्णन किया है, परंतु इसमें आत्मिक गहराई कम थी। भारतेंदु जी ने प्रकृति को भारतीय संस्कृति

की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। भारतेंदु युग में प्रकृति मुख्यतः वाह सौंदर्य के रूप में उपस्थित होती है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया। इस समय साहित्य में नैतिकता और राष्ट्रीयता की प्रधानता थी। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और अयोध्या सिंह हरिओद जैसे कवियों ने प्रकृति का शांत और सरल चित्रण प्रस्तुत किया है। राम नरेश त्रिपाठी की कविता में ग्राम्य जीवन और प्रकृति का सुंदर सामंजस्य मिलता है। प्रकृति यहाँ भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग बनकर आती है। हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की बात हो और छायावाद का उल्लेख न आए तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। छायावाद को आधुनिक हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला ने प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिया। छायावाद में प्रकृति केवल दृश्य नहीं रही बल्कि कवि के मन की अभिव्यक्ति बन गई। प्रकृति के माध्यम से प्रेम, वेदना, रहस्य, करुणा और आत्मानुभूति व्यक्त की गई है। छायावादी कवियों में पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्होंने हिमालय, वनों, फूलों और पक्षियों एवं उपवन का अत्यंत कोमल चित्रण किया है। जैसा कि पंत जी ने लिखा था, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। पंत जी के यहाँ प्रकृति जीवंत है, यह मानो मनुष्य से संवाद करती है। जैसे महादेव वर्मा की कविता में प्रकृति करुणा और विरह की साथी बन जाती है। बादल, वर्षा, पवन और रात्रि उनके मन की पीड़ा को व्यक्त करती है। उनकी कुछ पंक्तियां जो प्रसिद्ध हैं इस प्रकार हैं, जैसे उन्होंने अपने जीवन को जल से भरे बादल के समान बताया है और उन्होंने यह लिखा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात मेरा जीवन जल से भरे हुए बादल के समान है। जो बादल वाष्प को ग्रहण करता है, जल की बूंदों के रूप में उसे धरती पर बरसाता है, फिर जो है बादल आसमान से छट जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं होती। तो महादेव वर्मा ने प्रकृति को करुणा और विरह का साथी माना है। यहाँ कवित्री स्वयं को बादल के रूप में प्रस्तुत करती हैं। प्रकृति और मानव भावनाओं का ऐसा अद्भुत तादम्य छायावाद की विशेषता है। जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति को रहस्य और दर्शन से जोड़ा है। उनकी कविता में प्रकृति अत्यंत सौम्य और आध्यात्मिक रूप में दिखाई देती है। कि उन्होंने लिखा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। जैसा कि निराला जी ने प्रकृति में जीवन को और संघर्ष की शक्ति के रूप में देखा है और उन्हें जो है जीवन में विद्रोह दिखाई देता है। उनकी कविता जैसे वह तोड़ती पत्थर में प्रकृति के बीच श्रमशील जीवन का चित्र मिलता है। निराला की प्रकृति जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई है। छायावाद के बाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद का उदय हुआ। यह काल सामाजिक यथार्थ और जनजीवन की समस्याओं से जुड़ा था। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं देखा बल्कि उसे किसान, मजदूर और संघर्षशील जीवन से जोड़ा। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जैसे कवियों ने धरती, खेत, नदी और वर्षा को आम आदमी के जीवन से जोड़ा है। नागार्जुन की कविता में प्रकृति ग्रामीण जीवन की साथी है। उनकी कविता में मिट्टी की सूंधी गंध मिलती है। वे प्रकृति को जनजीवन की वास्तविकताओं के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनके यहाँ खेतों की हरियाली के साथ किसान की पीड़ा भी दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में प्रकृति केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, यह मनुष्य को जीवन जीने की कला भी सिखाती है। नदी हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वृक्ष हमें त्याग और सेवा का संदेश देते हैं। पर्वत हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाते हैं। सूरज हमें कर्मशील बनाना सिखाता है और चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारा ग्रामीण जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य ने इस सांस्कृतिक संबंध को अत्यंत सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया है। गांवों के साहित्य में प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से

0: आकर्षक दिखाई देता है। खेती में लहराती फसलें, आम के बौर, सरसों की पीली चादर, वर्षा की पहली बूंद और मिट्टी की सोंधी खुशबू, ये सब भारतीय जीवन की आत्मा है। साहित्यकारों ने इन दृश्यों को शब्दों में इस प्रकार पिरोया है कि पाठक स्वयं उस वातावरण को महसूस करने लगता है। सुबह की पहली किरण आशा जगाती है, पक्षियों का संगीत मन को प्रसन्न करता है और वर्षा की बूंद जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। यही कारण है कि कवियों ने प्रकृति को अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत माना है।
1: हिंदी वार्ता, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण, इस विषय पर शशिकला सिंह की वार्ता। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

नुरता पौडवाल और मनहर उदास की उगल युगल आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं सड़क फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा सुनिए सड़क फिल्म का ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उधास की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सड़क फिल्म का ये प्यारा सा गीत। और अब आइए सुने उदित नारायण और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में मृत्युदंड फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और धुन तैयार किया आनंद मिलिंद ने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे मृत्युदंड फिल्म का ये गीत, और इस गीत के साथ ही रस रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता के गाए गजल।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता के गाए गजल, और इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी। मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को लिखा इंदीवर ने और धुन तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब आइए सुनते हैं रसमाधुरी कार्यक्रम में ब्लैकमेल फिल्म का गीत आवाज है किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार किया एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी ने।

आप सुन रहे हैं रसमाधुरी कार्यक्रम। किशोर कुमार की आवाज में आइए सुने पड़ोसन फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार किया आर डी बर्मन ने।

रसमांतरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गीत, और अब आइए सुने मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में साथी फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तारपुरी ने और धुन तैयार किया नौशाद ने।

और अब रसमाधुरी कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश। आशा भोसले की आवाज में सुनिए वक्त फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा साहिर ने और धुन तैयार किया रवि ने।

इस गीत के साथ ही रसमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी

0: चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोप

0: आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. The goods under restricted category need government license for imports. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Andaman and Nicobar Islands, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Heavy rain is also likely in Keralam, Lakshadweep, Tamil Nadu, Karnataka and parts of the northeast. Thunderstorms with lightning and gusty winds are expected over several states including Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, Himachal Pradesh and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. The IMD has also predicted heat wave conditions in parts of Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Fishermen have been advised to avoid venturing into the South Bay of Bengal, Andaman Sea and adjoining coastal areas due to squally winds till Monday. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals. In the women's 77-kilogram category, Sanjana lifted 96 kilograms in the snatch, 124 kilograms in the clean and jerk, and a total of 220 kilograms to claim 3 bronze medals. In the Thailand Open Badminton, the Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Sei Fei and Noor Izzuddin in the semi-final in Bangkok today. The Indian pair won 19-21, 22-20, 21-16 in an 82-minute match to reach their first final of the season. In the final clash, the Indian duo will take on the Indonesian pair of Leo Roli Carnando and Daniel Martin. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders were 240 for 2 in 19.2 overs against Gujarat Titans at Eden Gardens when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and opted to field. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India and the Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of 3 languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins 3 bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी एएसएमएल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंह से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ

0: एक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिन उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिली होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिबे इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर पर 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्कूली तालीम और ख्वानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरदस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इक्तसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की उमूमी तशरीह के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर दस्तखत किए थे, जो दरियाए सिंध के पानी में

0: सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन, और अब आइए सुने आशा भोसले की आवाज में ये गजल।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। बेगम अख्तर की आवाज में सुनिए ये गजल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अरे भाई, ये सुनिए, अंजुमन कार्यक्रम में मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

इस गज़ल के साथ ही अंजुमन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his

0: music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरो अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम He is accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. Pandit Kaivalya Kumar Gurav begins his vocal recital with Rag Durga, Rupak Tal, Rasa Kanhare, Drut Ek Tal, Lagi Lagana Tore Piyase, Drut Teen Tal, Chatura Sugara.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला।

अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक

0: अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle